अच्छी बात कहते थे, बोले जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर भी आवश्यकता से कम, कहते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है वो सदा मौन रहता है। समझिए, वो सदा मौन में ही है, वो वाणी का तप कर रहा है। ये वाणी का तप है, आपको खबर भी नहीं है आप अपनी कितनी शक्ति अनर्गल बोल कर गंवाते हैं। तो फिर कहते हैं विजाति सुमिल वो भलो नाही, विजाति माने जो आपके रस के अनुकूल ना हो। अच्छा, एक और बात यहां मैं छोटी सी है पर कहना चाहूंगा, ये अच्छा है या बुरा इस वाद और विवाद में भी मत पड़िए, किसी के लिए ये घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पढ़ना भी ठीक नहीं है, जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा, होगा निश्चित रूप से होगा भाई, ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार। जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूं अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए, दूरम उपाय है, जो आपके अनुकूल ना हो बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए, वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौन रहकर उससे दूरी बना लेना ये बुद्धिमानी है। मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे, जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय ना मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि ना की जाए। जो सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के सबका

अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा। हो ही जाता है भाई, यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती। यही तो माया है, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे। यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है? यही तो है, संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती? यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। पर दोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते। आप में दोष दृष्टि ना हो, सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा।

श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाड़े। अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाड़े। अब आज तो संसार में ही रमे हैं हम, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, ये संसार इसीलिए रचा है। सीखिए समझिए, चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाड़े। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था। जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई। एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर मन को दूषित कर बैठता है, वो आवश्यकता से अधिक चाहता है। और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात, जुगल बिहार की करे बिचारे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं, और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रूपदास जी कह रहे हैं उनका संग करें, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करें, वार्ता करें, चिंतन करें, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे, विजाति को परस होना करें। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो, पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, न अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो, पर लौन बिना सब फीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या? तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में
भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं, तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की, चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही, वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है, उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वही मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे, आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये लेने, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों? बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है, आप पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहू कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। राका माका कहने लगे, प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है, हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं, सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे, बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। और मुस्कुराते हुए कहा, बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहाँ ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा, आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है, पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है, और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना, अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? जूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई, और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दुर्घर खाए। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करें तहां आचार करें, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करें तो शुद्धता का ध्यान रखें, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें?
आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है, और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो, बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें, प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही, शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने, जो भोग श्रीजू को लागे तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको, वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आचार भी करे कब, जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो, जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है, कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन श्री।

रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एकादश स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करें। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते हैं। श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है, भोर भये ते सांझ धरे तक सेवा कोही नेम हमारो। प्रिया जी की जो टहल है जो सेवा है ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। श्री जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर होए जाई, यही मैं आपसे कह रहा था, बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है,

हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विदित तो है अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का।

0: शीतल हूँ।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते हैं, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता है, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है, वस्तुतः सम्मानित वही है, समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। रघुदास जी कह रहे हैं उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे, पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो? अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करते है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो, नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। रघुदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया। वो जल गया कहां? सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? मैंने वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो रघुदास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल बालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया। तो कह रहे ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में न आवे कह रहे तिन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गुसाई कृष्णदास जी को पद साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाज। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार, अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो, ते सब नीके हैं घट को नाही। देवदास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की लीला अनेक प्रकार की है, द्वारिका लीला है, मथुरा लीला है, ब्रज लीला है, उसमें भी सख्य लीला है, वात्सल्य लीला है, माधुर्य लीला है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई जहाँ जहाँ जाको मन लागे है, ते सब नीके हैं, सब भले हैं, घट को नाही। कभी भी अपने मन में भावना है कि हम श्रेष्ठ भजन करते हैं, जो प्रभु का भजन करता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

0: जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी के विचार।
1: दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अलग अलग लोगों से अलग अलग बात सुनेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, पैसा बनाने के लिए कहां इन्वेस्ट करें? कुछ लोग आपको बोलेंगे इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। नीति आयोग भी कहता है कि 2030 तक आते आते $1 trillion का ये बिजनेस होने वाला है और जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो मैक्सिमम लोग आपको, पुराने लोगों से मिलिए तो बोलेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। कुछ और लोगों से मिलिए, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक्स में लगाइए, बॉन्ड्स में लगाइए, इंश्योरेंस में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ये आपको बेस्ट रिटर्न देते हैं।

कुछ लोग और आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं, इंश्योरेंस भी नहीं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। आज से 60 साल पहले गोल्ड इतने का था, आज इतने का है, उस समय लिया होता तो आज रईस होते। कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट की अलग अलग परिभाषाएं आपको बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए कहां निवेश करना जरूरी है। आखिरी में कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत शानदार बात आपसे करेंगे। वो कहेंगे सब छोड़ दीजिए, सब बेकार की बात है, इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एजुकेशन विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। हाँ बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। साथियों आज मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आपको बता देना चाहता हूं कि कहां इन्वेस्टमेंट आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देता है। मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो धमाकेदार बात है। वो बात आपको बताएगी कि कैसे गरीब इंसान अमीर हो सकता है, कैसे कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं, कैसे कुछ लोगों ने जिंदगी में वो फतेह हासिल की है जो बहुत सारे लोगों के लिए महज एक सपना है। मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं कि कहां निवेश करना चाहिए। सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज मैं आपके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पे भी बात करूंगा। कहां इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न देती है मैं बताता हूं। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। खुद के अंदर निवेश करें, अपने अंदर इन्वेस्टिंग कहां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना स्टॉक, ना बॉन्ड्स, ना प्रॉपर्टीज, ना चिल्ड्रन एजुकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की बेहद आवश्यकता है। इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, योर स्किल्स विल गिव यू द कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अगर आप ये जानते हैं पर कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते, अगर आप जानते हैं और कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। और आखिरी में हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, सबसे बड़ा वेपन चलाते हैं, जानते हैं क्या लिखता हूं, ये सब किस्मत का खेल है भाई, सब किस्मत का खेल है। वो रईस बन गया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। देखो सोनू शर्मा को 10वीं में मात्र 50% नंबर थे, क्या जबरदस्त नोट छाप रहा है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन कोचेस व्हाइल अनसक्सेसफुल पीपल नोज एवरीथिंग। हमें सब पता है नहीं चलता, अब हमने दुनिया देखी है ये भी नहीं चलता। आपका तजुर्बा आपको जहां तक ला सकता था ले आया, आगे का सफर आपके तजुर्बे से नहीं नॉलेज से होगा। आज का वीडियो आखिरी तक देखें, आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये 12-15 मिनट का वीडियो काफी है। आज मैं आपको वो 5 सफल सिद्धांत बता रहा हूं जिन्होंने कुछ लोगों को शीर्ष तक पहुंचाया। ऐसी पिटारा आपके सामने आज खोलने वाला हूं जो ना आपने सुना होगा ना आपने सोचा होगा। आज की वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा तो मैं दावा दे सकता हूं कि आपकी लाइफ सुपर सेट हो सकती है। 5 सक्सेस प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या करने से सफलता मिलती है। प्रिंसिपल नंबर वन बहुत शानदार है। क्या? नंबर वन, स्टार्ट योर करियर एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइस, बहुत सफल सिद्धांत मैं आज आपको दे रहा हूं। स्टार्ट योर करियर सुपर अर्ली, जितनी जल्दी हो सके अपना करियर स्टार्ट कर डालिए। वॉरेन बफेट ने अपना करियर 11 साल की उम्र में चालू किया, पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने 11 साल की उम्र में की, दुनिया के टॉप 5 रईस लोगों में से हैं। इसमें भी वो एक बात कहते हैं कि मुझे और जल्दी शुरू करना चाहिए था। जानते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम क्या है, मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, धूप लग जाएगी, सर्दी में जाएगा तो जुकाम लग जाएगा, अभी उम्र बड़ी छोटी है, खेलने खालने की उम्र है, ऐसी बातें मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मिडिल क्लास कर देती है। सफल लोग जल्दी शुरू करते हैं। वर्जिन अटलांटिस के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपना करियर 16 साल की उम्र में चालू किया। जानते हैं दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर महज 12 साल की उम्र में बेच दिया, और हमारे यहां 12-13 साल की उम्र खेलने खालने की उम्र होती है, जिस उम्र में दुनिया के दिग्गज लोग अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। मैं आपको ये प्रिंसिपल देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड इफ यू आर अ टीनेजर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आपका समय अभी शुरू होता है अगर आपकी उम्र 16-17 साल है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 5-8 साल लगेंगे। अगर आज आप 17 साल में हैं, 8 साल और जोड़ लीजिए, 25 साल में आप एक सफल इंसान होंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2 आपको बता देना चाहता हूं, फेल क्विकली बट कीप मूविंग। फेल हो जाइए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है। फेल क्विकली, जल्दी फेल होइए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट कीप मूविंग, बढ़ते रहिए। मैं आपको एक सबसे अच्छी बात आपके लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग अर्ली बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 100% फेल होने वाले हैं। अरे आप बोलेंगे सोनू सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस दुनिया की, आप 100% फेल होने वाले हैं, सच है, क्योंकि आपने यात्रा बहुत जल्दी शुरू कर दी। अभी आपके पास ना स्किल है ना मार्केट का नॉलेज है, हो सकता है कोई मेंटोर भी ना हो जो आपको बचा सके। स्क्रैच से करोड़पति बनने का एक ही तरीका है, क्या? जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो कर लो, इस उम्र में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो करो और कन्वर्ट करो उसको एक्शन के अंदर। जब आप मार्केट में चैलेंज फेस करो तो मान लो कि मार्केट आपका टेस्ट ले रही है। डरना मना है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। फेल हो जाइए, जल्दी फेल होइए, बट कीप मूविंग। तीसरा सफल सिद्धांत आपको देता हूं, एजुकेट योरसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी मिलेनियर एंड बिलेनियर, एजुकेट योरसेल्फ। निरंतर सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, इंटरव्यूज पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए सफल लोगों की, एनालाइज कीजिए बाकी लोगों के बिजनेस। और जानते हैं मजे की बात क्या है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत चीपर है या एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको इस वीडियो को देखने का, फोकट में देख रहे हैं कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। दुनिया में सबसे सफल बढ़िया ज्ञान फोकट में मिल जाता है दोस्त, बस अफसोस है कि हम सीखते नहीं है। 300 से ज्यादा वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर, जरूर सब्सक्राइब करिए। 300 से ज्यादा फ्री वीडियो जहां पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं, एजुकेट योरसेल्फ, सीखिए, केस स्टडी से सीखिए, सफल लोगों की जीवनी से सीखिए और सारा का सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी जिंदगी में लगाइए, जहां मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस आज आपके यूट्यूब के अंदर है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपन सफल हुए। इफ यू वॉन्ट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स, रिकॉर्डिंग्स, हर चीज जो आपकी स्किल को बिल्ड करे। और जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे ना, उतने ज्यादा समय तक उन स्किल्स को यूज कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे उतने ज्यादा समय तक स्किल्स को यूज कर सकते हो। कार अगर आपने 18 साल की उम्र में सीख ली और आप 80 साल जीते हैं तो 62 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार 60 साल की उम्र में सीखी और 80 साल तक जिए तो उसका फायदा सिर्फ 20 साल उठा सकते हैं। बिकम अ सेल्फ लर्नर, लर्न अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू टॉक, हर टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, सीखिए और आगे बढ़िए। प्रिंसिपल नंबर 4 आपको बता देना चाहता हूं, सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको ये डेंट करने वाला है, आपको चोट देगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा कि सोनू सर आज क्या बताने के मूड में आए हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ। यस बॉयज एंड गर्ल्स, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ। अपनी सोशल लाइफ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गुर्बत और गरीबी से निजात पाने के लिए कीमत आपको देनी ही पड़ेगी, यह कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल एक रॉकेट की तरह जिसका सबसे ज्यादा फ्यूल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने में लग जाता है। आपके जो शुरुआती साल हैं उसमें आपको सोशल लाइफ को बायकॉट करना पड़ेगा। जी हां, 40 घंटा अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा ही काम करते हैं तो यह सिर्फ आपके खाने की पूर्ति करेगा, आपके बिलों का भुगतान करेगा, दैट्स इट। अगर आप 40 आवर्स अ वीक मेहनत करते हैं तो सिर्फ बिल भुगतेंगे आपके, आप एक आम जिंदगी जिएंगे, मर जाएंगे।
लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स 40 से बढ़कर 100 हो जाते हैं, अगर एक हफ्ते में आप 100 घंटा काम करते हैं, यह आपको लाइफस्टाइल देगा, यह आपको जबरदस्त लाइफ देगा और आपको एक अमीर लाइफ को फील करवाएगा अगर आप 100 घंटे काम करते हैं। लेकिन 100 घंटे काम कब करेंगे? जब सोशल लाइफ को बायकॉट करेंगे। कोई फालतू की दोस्ती नहीं, फालतू की रिश्तेदारी नहीं, कहीं फालतू का आना नहीं, फालतू का जाना नहीं, इधर उधर की गॉसिप में खोपड़ी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना अपने करियर और अपने गोल के ऊपर। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि ये कीमत ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप भी बाकी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप डिसाइड करिए कि आप कितने घंटे रोजाना अपने मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी की तैसी कराकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7-7 8-8 घंटे के आवर्स हैं। कैन यू बिलीव इट? दुनिया भर का अनप्रोडक्टिव काम लोग बात करते हैं। कभी इसकी शादी में जाना है, कभी उसके रिश्तेदारी में जाना है, कभी फालतू फंड का गॉसिप करना है, चार दोस्त बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। 24 घंटे खत्म होने के बाद, वो 24 घंटे दुनिया भर की संपदा देने के बाद भी आपके पास नहीं आते। आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा सोशल लाइफ और फोकस करना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। पांचवी सबसे खतरनाक चीज, सराउंड योर सेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। अपना वातावरण सफल लोगों के साथ बनाइए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपके आजू बाजू में वो लोग हों जो आपको इंस्पायर कर सकें। कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए, कुछ ऐसी एसोसिएशन तलाशिए जहां पर आपके आजू बाजू के लोग बड़ी बात करने वाले हों, बड़े सपने देखने वाले हों, बड़े आइडियाज हों जिनके पास, और अर्ली बिगिनर्स हों जिनके पास गीता ज्ञान के नाम पर कुछ ना हो लेकिन एनर्जी सुपर फास्ट हो। इन सबकी एसोसिएशन में आप कमाल कर जाएंगे। बींग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर एंड बींग विद अ लूजर विल मेक यू अ लूजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पांच प्रिंसिपल अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर गए, मैं दावा दे सकता हूं ये साल आपकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत साल हो सकता है।

0: रॉकी भाई जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है तो फॉलो करो KGF हेल्थ टिप्स
1: कोलार गोल्ड फील्ड।
0: नहीं, KGF मतलब कीप जिमिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी।
1: ऐसे ही सिनेमैटिक हेल्थ टिप्स जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, आपकी वीकेंड की लेजीनेस को बाय बोलने के लिए मंडे लेकर आ गया है एक न्यू एनर्जी और न्यू गोल्स और एक फ्रेश बिगिनिंग। वेलकम टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज आपसे ना बहुत सारी बातें करने वाली। पहली बात तो यार, नया वीक शुरू हो चुका है और जब नया वीक आता है ना तो अपने साथ लेकर आता है बहुत सारी एनर्जी। यानी कि आज स्ट्रेस को कर दीजिए साइड, पॉजिटिविटी के साथ अपने मंडे को एक किक स्टार्ट कीजिए और फिर से नई एनर्जी के साथ, नई मस्ती के साथ, नई वाइब के साथ पूरे हफ्ते की शुरुआत कीजिए। सो बेसिकली आज मॉर्निंग एक्सप्रेस में बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, यूजफुल अपडेट्स और मोटिवेशन म्यूजिक, फुल ऑन गुड वाइब्स मिलने वाले हैं आपको। तो माय डियर लिसनर्स, हो जाइए रेडी, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मसाले वाली चाय की गर्मा गर्म चुस्के लीजिए और 3 घंटे के लिए मेरे साथ मॉर्निंग एक्सप्रेस की एक्सप्रेस पर सवार हो जाइए, जहाँ पर लगेगा एंटरटेनमेंट की डबल डोज का तड़का। तब तक के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई देखिए, मॉर्निंग एक्सप्रेस में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज वेदर की। मौसम का क्या हाल है अपने शहर में ये जान लेता है। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 43 डिग्री जाने वाला है। इसके बाद अगर मिनिमम की बात की जाए 31 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 24 मिलने वाली है। ह्यूमिडिटी मिलेगी 25%, यानी कि दिन अच्छा खासा गर्मी भरा रहने वाला है। सनी सनी आज का पूरा दिन है, कोई भी बारिश के आसार नहीं है। सो इस गर्मी से अगर बचना है ना, तो हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहिएगा और जितना हो सके ना पानी के साथ में सीजनल फ्रूट्स भी खाइएगा, सो दैट कि पानी की कमी ना फूड से भी पूरी हो जाए। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहे हैं आप, सुनो तो
2: इरशाद।
1: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
1: हाँ जी।
2: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
2: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। जब गाड़ी में बजे आरजे अंजलि की आवाज, समझो मॉर्निंग हो गई एकदम फर्स्ट क्लास।

साता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

शानदार सुट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ मैं आज आपको ये बताने आई हूँ अवेयरनेस और रिसर्च हेल्दी फ्यूचर की बिगेस्ट होप है और इसीलिए आज सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे, यानी कि एक दिन जो HIV अवेयरनेस प्रिवेंशन और वैक्सीन रिसर्च को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और अगर जिंदगी बात करूँ तो सबसे पहले HIV अवेयरनेस जरूरी क्यों है ये जानते आइए। करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिथ को हमेशा दूर करती है, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही अर्ली टेस्टिंग और ट्रीटमेंट हेल्प करता है इस बीमारी से लड़ने के लिए। अवेयरनेस हमेशा स्टिग्मा को कम करती है और आपको सपोर्ट दिलाती है। और अगर बात की जाए वैक्सीन रिसर्च की, तो वैक्सीन रिसर्च का रोल कितना है हम लोगों की लाइफ में। साइंटिस्ट और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिसर्च कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में बेटर प्रिवेंशन पॉसिबल हो सके। इसलिए आज का दिन अपने साथ अवेयरनेस लेकर आया, यानी कि नॉलेज और अवेयरनेस ही हमारे फियर को रिप्लेस कर सकता है। सो आज के लिए इम्पोर्टेंट रिमाइंडर ये है, सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो कीजिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स इम्पोर्टेंट है उनका ख्याल रखिए, साथ ही जितने भी HIV पेशेंट्स हैं उनके साथ एम्पैथी और रिस्पेक्ट के साथ पेश आइए। आज अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए सो दैट की जजमेंट नहीं सपोर्ट दे सके आप किसी को। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं अवेयरनेस का भंडार लेकर आ गई हूँ। और कहा जाता है अवेयरनेस से फियर कम होता है और सपोर्ट बढ़ता है, इसलिए आज से सेलिब्रेट किया जा रहा है एपिलेप्सी अवेयरनेस वीक, यानी जो लोगों को एपिलेप्सी के बारे में अवेयर करने के लिए डेडिकेटेड है। और अगर इस वीक की बात करें तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर एपिलेप्सी है क्या। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन एक्टिविटी डिस्टर्ब होने की वजह से सीजर्स आ सकते हैं। अब इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कॉन्टेजियस नहीं होता, यानी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर से नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है। एंड इसके साथ ही अवेयरनेस और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो एपिलेप्सी से डील कर रहे हैं उन लोगों के लिए। अगर किसी को सीजर आए तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले काम रहिए। जिस भी इंसान को सीजर आया है उस पर्सन को सेफ पोजीशन में रखिए, साथ ही सराउंडिंग में जितनी भी डेंजरस चीजें हैं सब हटा दीजिए। फोर्सफुली उस इंसान को होल्ड मत कीजिए और ना ही उन्हें पानी पिलाने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एंड इसके साथ ही अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी किसी भी कंडीशन से लड़ने की बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है। सो माय डियर लिसनर्स, हमेशा प्यार एंड रिस्पेक्ट के साथ पेश आइए और साथ ही मिथ्स पर नहीं फैक्ट्स पर ट्रस्ट कीजिए। इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। हम तो

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो
3: इरशाद।
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
2: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
3: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
3: बाय।
2: सुनो तो, कहाँ चली?
3: बाय।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अगर बात फ्यूचर की करें ना, तो फ्यूचर अब दूर नहीं बल्कि हमारे हाथों में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चले इस बारे में बात कर लेते हैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन जी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज से स्टार्ट हो गया है टेक वीक और हम एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं इनोवेशन, गैजेट्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के नाम। अब बात कर ही रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इसने हमारी लाइफ को कैसे चेंज किया है। सबसे पहले जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट्स है ना, स्मार्ट हो गए, यानी कि आप घर बैठे कहीं भी पेमेंट कर सकते हो। एंड अगर AI की बात करें तो इतने स्मार्ट टूल्स हमें मिले हैं कि काम चुटकी बजाते हो जाता है। हेल्थ केयर हो, फिर चाहे ट्रेवल हो या फिर कम्युनिकेशन, हर जगह हमें टेक्नोलॉजी नजर आती है, यानी कि हर चीज ना स्मार्ट होते जा रही है। और आज का टेक ट्रेंड भी यही कहता है, AI रोबोटिक्स और ऑटोमेशन फ्यूचर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब आप खुद को ही देख लीजिए ना, अगर कहीं जाना होता तो पहले हम डायरेक्शंस पूछते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, GPS खोलते हैं और बिना किसी से पूछे पूरा का पूरा रास्ता तय कर लेते हैं। तो ये किया है टेक्नोलॉजी ने हम सबके लिए, लेकिन ये वीक अपने साथ एक रिमाइंडर लेकर आया। एंड रिमाइंडर ये है, टेक्नोलॉजी पावरफुल है लेकिन उसका सेफ और स्मार्ट यूज और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो इस टेक वीक में इनोवेशन को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन डिजिटली अवेयर भी रहना उतना ही जरूरी है। सो बी स्मार्ट और सेलिब्रेट कीजिए पूरे वीक टेक वीक को, और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हाँ
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ इस तरह बीच सड़क पर नाच। अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

क्यूट स्माइल, ग्रेसफुल स्क्रीन प्रेजेंस और फैंस की फेवरेट स्टार। आज हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है रेडियो महारानी पर शिवांगी जोशी का। अगर बात की जाए शिवांगी की, तो एक टेलीविजन एक्ट्रेस है, यानी कि टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी से घर घर में एक स्पेशल पहचान बनाई है इन्होंने। और साथ ही इतना ही नहीं, ऑडियंस ने स्पेशली पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के रोल के लिए ना बहुत प्यार दिया है शिवांगी को। अगर इनकी बात करें तो क्या इन्हें स्पेशल बनाता है? सबसे पहले एक नेचुरल एक्टर है, अपने एलिगेंट स्टाइल से फैंस का दिल जीते बैठी है, स्ट्रॉन्ग फैन कनेक्शन रखती है, सोशल मीडिया पर भी इनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। इनकी पॉजिटिविटी और सिंप्लिसिटी को देख करना फैंस काफी इन्हें पसंद करते हैं। सो रेडियो महारानी पर आज हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है शिवांगी जोशी का। शिवांगी विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ रेडियो महारानी। ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, अपने फैंस का दिल जीतते रहे, सक्सेस, हैप्पीनेस और अमेजिंग प्रोजेक्ट से अपने फैंस के दिलों पर ऐसे राज करते रहिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जहां सुबह की शुरुआत होती है फिटनेस और हेल्थ टिप्स के साथ। सुनना ना भूलिए मॉर्निंग एक्सप्रेस आरजे अंजलि के साथ।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहे हैं आप, सुनो तो
2: इरशाद।
1: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
1: हाँ जी।
2: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
2: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

अक्सर हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि जिस दिन तुम पेरेंट बनोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कितना मुश्किल होता है पेरेंट बनना, और पेरेंट्स बनना इजी नहीं होता, और इस लेसन को ना शायद स्कूल ने प्रैक्टिकल वे में सिखा दिया है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ, और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो आज के सोशल स्यापा में चाइना से एक ऐसा इंसिडेंट लेकर आई हूँ जहाँ पर चाइना के स्कूल का एक यूनिक आइडिया सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। सो अगर स्कूल की मैं बात करूँ ना तो यहाँ के स्कूल का एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर स्टूडेंट पूरा एक वीक तक बेबी डॉल्स को कैरी करता है, उनको एक रियल बेबी की तरह ट्रीट करता है, और इतना ही नहीं पूरा एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि आखिर स्टूडेंट्स को करना क्या है। सबसे पहले इन स्टूडेंट्स को अपने साथ एक डॉल को रखना पड़ता है, उन्हें फीडिंग और स्लीपिंग रूटीन मैनेज करना पड़ता है, नहीं उनकी केयर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी पड़ती है, जैसे कि आप एक रियल बच्चे को संभाल रहे हो। सो अगर इस एक्टिविटी की बात की जाए ना तो इसके पीछे का एक पर्पस, और पर्पस ये है कि स्कूल का मानना है कि इससे स्टूडेंट को पेरेंटिंग स्ट्रगल समझने में हेल्प मिलेगी, और साथ ही इस एक्टिविटी से उन्हें अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड फील होगा। सो अगर इस कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकली फील होती है तब अप्रिसिएशन नेचुरली आ ही जाता है। और अगर इस कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट ना एक इंटरेस्टिंग टास्क लेकर आता है, जैसे कि होमवर्क और एग्जाम के बीच जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो यही एक लेसन है जो स्टूडेंट को पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। सो है तो बड़ा मजेदार, मस्ती के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीख रहे हैं और कुछ यूनिक मिल रहा है। बिकॉज अगर स्कूल की बात की जाए ना तो पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो जाते हैं बच्चे, ऐसे में अगर कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कराई जाए ना तो बच्चों को मजा आता है स्कूल जाने में। और देखिए अगर आप पेरेंट्स के दुख दर्द को समझ पाए तो फिर क्या ही चाहिए हमारे पेरेंट्स को। सो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, बाकी सारे स्कूल्स भी इनिशिएटिव अपना सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए प्यारा ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो।

जब बात आती है ना साइबर फ्रॉड की, तो इतने इंटरेस्टिंग केसेस सामने आते हैं कि भाई ऐसे लगता है कि आप किसी वेब सीरीज की कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो फाइनली एक और स्कैम मार्केट में आ गया और स्कैम ये है, शादी के इनवाइट समझकर अगर आपने कभी फाइल ओपन की ना, सो हो सकता है स्कैमर्स आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे। एक्चुअल में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया बैंगलोर से। बैंगलोर के एक बिजनेसमैन के साथ साइबर फ्रॉड का एक शॉकिंग केस फिर से हो गया, जहां उनको एक व्हाट्सएप पर आई थी एक वेडिंग इनविटेशन की फाइल। उन्होंने उस इनविटेशन को क्लिक किया और क्लिक करते ही ना लाखों का नुकसान करा लिया अपना। बात अगर स्कैम की करें तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्कैम हुआ कैसे। सबसे पहले व्हाट्सएप पर वेडिंग इनवाइट उन्हें रिसीव हुआ, एपीके फाइल जब उन्होंने ओपन की तो मालवेयर इंस्टॉल हो गया अपने आप ही, एंड स्कैमर को मिल गया उनके फोन और बैंकिंग डिटेल्स का पूरा एक्सेस। और देखते ही देखते कुछ ही देर में अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गए और लाखों का नुकसान हो गया। अब स्कैम के अंदर ना एक चीज थी, वो थी एपीके फाइल। तो आखिर ये एपीके फाइल है क्या? सबसे पहले तो एपीके फाइल एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉलेशन फाइल होती है। अगर इस फाइल की बात करें ना, तो ये अननोन फाइल बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है हिडन सॉफ्टवेयर। अब बात तो कर ली स्कैम की कि आखिर स्कैम हुआ कैसे, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर स्कैम से बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आपको जो भी अननोन फाइल रिसीव होती है, कभी भी उसे ओपन ना करें। साथ ही अगर बात की जाए एप्स की, तो ऐप स्टोर या फिर एक ट्रस्टेड ऐप साइट से ही किसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसके साथ ही अगर व्हाट्सएप पर आपको कोई भी सस्पिशियस फाइल मिलती है, उसे जरूर वेरीफाई कीजिए। बैंकिंग अलर्ट्स और परमिशन रेगुलरली चेक करते रहिए, सो दैट कि आपको पता रहे कि आपके फोन के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है। और बस यही कहना चाहती हूँ, डिजिटल दुनिया में क्यूरियोसिटी से पहले ना थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। एक रॉन्ग क्लिक आपकी पूरी मेहनत की कमाई रिस्क में डाल सकता है। स्टे अलर्ट, स्टे साइबर सेफ और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब

0: एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

So, आज की बातों का कोटा हो गया है यहीं पूरा और इस मॉर्निंग एक्सप्रेस के सफर पर अब लगने वाला है विराम आज के लिए। कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारी मस्ती के साथ, और इसी के साथ ना आपको एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलेगा। लेकिन आज नहीं, कल फिर से आएंगे, कल मॉर्निंग एक्सप्रेस के इस एक्सप्रेस को लेकर और इस सफर पर निकल पड़ेंगे, जहां पर आपको रेडियो महारानी एंटरटेनमेंट का डबल डोज देगा। सो मेरे साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साइबर स्कैम से बच के रहिएगा, साथ ही एंजॉय कीजिएगा ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।

0: 6000
1: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज,
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके,
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर 4 सवारी तो अपनी गोदी में भी 3 बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: हाँ, वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे क्लास तो पीती जा, सुन।
2: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
3: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके।
3: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
4: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
5: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर की शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में, जहाँ इस वक्त 37 डिग्री सेल्सियस तापमान फरीदाबाद शहर का बना हुआ है। देखिए गर्मी बढ़ती जा रही है, कल दिन में 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचते नजर आ रहा है। यहाँ आपसे यही कहूँगा कि लू के बीच में 42 डिग्री टेम्परेचर पहुँचना एक बहुत ऐसी बात है कि हमें मौसम के चक्कर में अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर साल मई और जून में फरीदाबाद में तापमान 42 के पार पहुँच जाता है। पिछले अगर बात की जाए तो अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ORS छाछ नींबू पानी का सेवन करने की सलाह दी गई है ताकि बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो, ताकि मौसम से बचा जा सके। तो प्लीज़ ऐसे दोपहर के टाइम पे बाहर ना निकले, जाएं तो सिर कवर करके जाएं, चाहे कैप से चाहे किसी और स्कार्फ से, और पानी बॉटल्स अपने साथ ज़रूर रखें। बाकी ऐसी भी चर्चाएँ करता रहूँगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं जहाँ पर एपी के फाइल्स से लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। देखिए जहाँ ये बात पहले भी आ चुकी है कि प्लीज़ आप क्यों ना अगर किसी अननोन नंबर से किसी ग्रुप्स में एपी के फाइल आती है, वो नोन नंबर से भी आती तो प्लीज़ ओपन ना करें, हो सकता है उनका फ़ोन हैक हो और आपके फ़ोन में भी एपी के फाइल आ जाए तो वो भी हैक हो जाए। एपी के फाइल्स एक ऐसी फाइल्स हैं जो कि आपके फ़ोन में आते हैं, आपके फ़ोन को हैक कर सकती है अगर आप उसको ओपन करें, तो प्लीज़ इन चीज़ों से सावधान रहें। और कहीं भी आपको घूमने जाना है, समर वेकेशन है, कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, कुछ भी चीज़ें वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से ही कंफर्म करें जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो। अगर कभी भी आपके फ़ोन में ऐसा OTP आ जाए या फिर आपको पेमेंट के लिए कुछ नीचे लिंक्स पे क्लिक किया जाए, और अगर साथ ही साथ आप कभी भी पेमेंट रिसीव करने के लिए आपसे कहा जाए आप प्लीज़ OTP बता दीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जो करने सामने वाला शख्स ही आपको स्कैन करके भेज सकता है। अगर आप पेमेंट रिसीव करने के लिए भी किसी OTP प्रोवाइड कराते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, इट मीन्स आप ठगी का शिकार होने वाले हैं। प्लीज़ इन चीज़ों से सावधान रहें। बाकी ऐसे भी चर्चा करता रहूँगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं जहाँ आप सब जानते हैं फरीदाबाद के खिलाड़ी आए दिन फरीदाबाद शहर का नाम रोशन करते नजर आते हैं। मैं बात करूँ यहाँ पे जौहरपुर से संपन्न हुई एथलेटिक चैंपियनशिप में शहर के

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: अर्ज करते हैं
0: इरशाद।
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो। इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपने घर से तो ही पी, मैं आ तो

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ठानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर फिल्म डालने का आरजे मॉन। यहाँ दोस्तों बात करते हैं फुकरे कहानी की चौथी फ्रेंचाइज के बारे में। जी हाँ, बात की जाए पुलकित ने रिसेंट ही सोशल मीडिया पर फुकरे फोर के बारे में तो राइटर विदीप सिंह लांबा से ही इसकी चर्चा मिलेगी ऐसा कहते नजर आए। यानी कि फिल्म अभी स्क्रिप्ट स्केड्यूल स्टेज पर है ना कि शूटिंग फाइनलाइज। बता दें कि पुलकित सम्राट की ये बहुत बेहतरीन मूवी सीरीज में से एक है फुकरे, जहां अच्छा खासा प्यार मिलता हुआ नजर आता। बात करें पुलकित सम्राट जहानी के रूप में फ्रेंचाइज में हीरो पे के रूप में रहेंगे वहीं वरुण शर्मा, अलवजल, मंजोत सिंह और ऋचा चड्ढा भी इस कहानी में नजर आने वाले हैं। और फुकरे ऐसी फ्रेंचाइज जहां हर किसी किरदार के डायलॉग्स में एक अलग ही फन है, एक अलग ही केमिस्ट्री। इंतजार रहेगा इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी। सवाल का और खूबसूरत सा ट्रैक

0: के आगे गराज, गराज की ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उजले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से। इरफान और विद्या बालन की 25 साल पुरानी अनरिलीज फिल्म द लास्ट स्टंट जो कि अब यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, यानी ये उन दोनों की एक ऐसी रेयर ऑन स्क्रीन कोलैबोरेशन की तरह आई है जिसे फैंस पहले कभी थिएटर या ओटीटी पर नहीं देख पाए थे। द लेटेस्ट चैनल 1999 से 2000 के आसपास बनी जब इरफान और विद्या दोनों की शुरुआत, और ये फिल्म इरफान की शायद पहली फीचर्स और विद्या की फिल्म में शुरुआत के बाद बनी शूट्स में लगी है। यह फिल्म सार्थक दास गुप्ता द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई थी। इसके बाद लगभग 25 साल तक शेल्फ पर रख दिया गया क्योंकि फुटेज जो खो जाने की वजह से ये रिलीज नहीं हो पाई, और अब फाइनली फिल्म के डायरेक्टर्स एक वीएचएस कॉपी बचा कर रखी जिसके बाद वे रीस्टोर करके इसे अब रिलीज किया गया। जी हाँ, फिर इस कहानी को लाया गया है और अब देखते हैं इस कहानी को कितना प्यार मिलेगा जो कि इरफान के जाने के बाद ये कहानी रिलीज की गई। देखिए इरफान और विद्या की कहानी को कितना प्यार कितना पसंद किया जाने वाला, बाकी ऐसी भी चर्चा करता रहूँगा। उससे पहले एक और ट्रैक।

your voice. I am singing song. Soup song.

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता
2: है। अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

0: डांस बसंती
1: फिल्मी ट्विस्ट से लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं विक्रम भट्ट आनंद पंडित की नई 3D हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ द पास्ट। एक डरावना टीजर आया जिसकी रिलीज अब 12 जून 2026 को थिएटर्स में आने वाली है, जहां मीमो चक्रवर्ती और चेतना पांडे लीड किरदार में होने वाले। हॉन्टेड 3D वाली फ्रेंचाइज का स्पेशल सीक्वल है जिसे फिर से विक्रम डायरेक्ट करते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3D हॉरर फॉर्म में आ रही कहानी ताकि ऑडियंस थिएटर में ज्यादा हॉरर फील एक्सपीरियंस कर सके। प्रमोशन मटेरियल में यही बात जोर से हाईलाइट की जा रही है कि यहाँ जो एक्सपीरियंस होने वाला है हर कोई इसका दीवाना हो जाएगा। तो रहेगा इंतजार इस कहानी के रिलीजिंग का, बाकी ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और ट्रैक

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फॉरएवर। यहाँ अब हम बात करते हैं मनोज वाजपेयी की आने वाली अगली कहानी गवर्नर द साइलेंट सेवियर के बारे में। पॉलिटिकल ड्रामा फाइनेंशियल थ्रिलर जिसमें मनोज वाजपेयी भारत के एक आरबीआई स्टाइल गवर्नर यानी कि सेंट्रल बैंक गवर्नर के रूप में दिखेंगे जो देश के 1990 के बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से बचाने की कोशिश करते हैं। कहानी रियल लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस पीरियड से इंस्पायर्ड यानी इस फिल्म का नाम द केरला स्टोरी वाली फैक्चुअल ड्रामा लाइन पर लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम और पॉलिटिकल पावर के बीच टकराव पर बनी हुई कहानी। चिन्मय मांडलिकर इस कहानी को लेकर के आ रहे हैं जहाँ मनोज के अलावा इस कहानी में आधा शर्मा फिल्म की फीमेल लीड उनका रोल भी राजनीतिक फाइनेंशियल स्पेस से जुड़ा होने की उम्मीद है। मधु शाह और वेटेरियन एक्टर भी शामिल हैं जिनके किरदार नेशनल लेवल पावर गेम को और गहरा दिखाएंगे। म्यूजिक अमित त्रिवेदी का है तो गाने जावेद अख्तर साहब के। इंतजार है इस कहानी की रिलीजिंग का जो कि 12 जून 2026 को थिएटर्स में रिलीज की जा रही है। ये चीज मनोज वाजपेयी ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते नजर आए। इंतजार रहेगा इनकी रिलीजिंग का। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं होती रहेंगी।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: पीआर है, इस खातिर तेरा तक करया प्यार को न्या। और सारी दुनिया में जागी टोली है, तने जाट बरगा मिलेगा यार को न्या। और मैडम है, दिन में सिप्टा रात ने स्टूडियो में गावे, मने तेरा जैसा देखा स्टार को न्या, तेरा जैसा देखा स्टार को न्या।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
3: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
2: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं एक बहुत बढ़िया कहानी और कास्ट के बारे में, जहाँ आप सबको बता दूं कि चर्चाएं चल रही हैं एक नई कहानी जिसका नाम है टॉम एंड जेरी रिलीज हो रही है। देखिए कहानी की अगर बात की जाए तो इस कहानी में हमें दिखने वाले हैं आसिफ शेख, शिल्पा शिंदे और अली असगर। तीनों की तिकड़ी आने वाली है एक बार फिर से, लेकिन इस बार सिल्वर स्क्रीन पर, और इस कहानी का नाम है टॉम एंड जेरी। भाभी जी घर पर हैं जैसी फील देती नजर आ सकती है ये कहानी, ऐसा चर्चाएं चल रही है। देखते हैं इस कहानी में और भी बहुत सारे स्टार्स हमें देखने वाले हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो परितोष पिंज इस कहानी को डायरेक्ट करते नजर आएंगे, जहां स्टोरी भी इनकी खुद की है। देखते हैं ये तीन की तिगड़ी यानी आसिफ, शिल्पा और अली असगर क्या धमाल मचाने वाले हैं। जहाँ आसिफ और शिल्पा तो भाभी जी घर पर ऐसे ही इनकी कास्ट सबसे फेमस रही है, अब यहाँ पे अली असगर का नाम भी जुड़ते नजर आया। इंतजार रहेगा रिलीजिंग का, बाकी अजीब भी चर्चाएं होती रहेंगी। उस समय एक और ट्रैक

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा,
0: सुनो तो, सुनो तो,

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं धुरंधर फ्रेंचाइज के, बात करें स्टार राकेश बेदी ने नोरा फतेह के साथ एक नया डांस सॉन्ग शूट किया और उसका फन वीडियो भी शेयर करते नजर आए। बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मास स्प्रेडिंग सॉन्ग स्टाइल कोलाब बन रहा। राकेश बेदी असल में धुरंधर 2 द रिवन में जामिल जामाली के रूप में फिर से धमाल मचा चुके हैं और उन्होंने इसी स्टार मोमेंट को आगे बढ़ाते हुए नोरा फतेह के साथ डांस सॉन्ग बनाया जिसे उन्होंने इंडिया का बिगेस्ट सेंसेशन जैसे शब्दों से हेड किया। देखते हैं कि नोरा ने वीडियो में उनकी तारीफ करते हुए कि आपका डांस बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। जहां जमाल का यानी राकेश बेदी का अब ये डांस वीडियो सबका सामने आने वाले फैंस उत्सुक हैं कि कुछ हटके देखने के लिए, कुछ डिफरेंट देखने के लिए, जैसे कि रेडियो महारानी है कुछ हटके इंतजार रहेगा। बाकी ऐसी चर्चा करता हूँ।

0: खराब सड़कों से छुटकारा, सुरक्षित सफर हमारा।
1: दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी बिना किसी वजह से डांस कर रही है तो समझ जाइए सड़क पर गड्ढे अपनी धुन पर नाच रहे हैं। कब तक ये झटके सहेंगे? अब आइए आवाज उठाएं और बदलाव लाएं।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यार दोस्तों, सिनेमा के गलियारे से हमने बहुत ही चर्चाएं करी कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने की ओर हैं और लास्ट वीकेंड पर रिलीज हुई कहानियां कौन से पायदान पर। कुछ किस्से कहानियां सिल्वर स्क्रीन के तो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म के। हिंदी पढ़ी से साउथ इंडस्ट्री, साउथ से पंजाबी इंडस्ट्री गाने तो कहीं हुई चर्चाएं हॉलीवुड के सस्पेंस और थ्रिल की। ऐसी डबल डोज कॉमेडी और रोमांटिक से भरपूर आप सबके लेकर के आता रहूंगा सिनेमा के गलियारों में। लेकिन आज नहीं, अब यहाँ से वक्त तो चले जाने का, कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम जगह बातें। तब तो सुन रहे रेडियो महारानी 89.6 FM को छट के और खूबसूरत सा ट्रैक

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

1972 में मध्य प्रदेश के खांडवा में जन्मे शांतनु मुखर्जी, जिन्हें दुनिया आज शान के नाम से जानती है, उनका म्यूजिक से कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं था, ये उनके खून में था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। हम बात कर रहे हैं आज शान, द सिंगर शान, उनका नाम है शांतनु मुखर्जी। उनके फादर मानस मुखर्जी एक रिस्पेक्टेड म्यूजिक डायरेक्टर थे। घर में रियाज, रिकॉर्डिंग, म्यूजिशियंस का आना जाना, शान का बचपन लिटरली सुरों में बीता था। लेकिन लाइफ ने पहला बड़ा झटका तब दिया जब शान सिर्फ 13 साल के थे और उनके फादर का देहांत हो गया। एक मिडिल क्लास स्ट्रगल शुरू हो गई, मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। मदर ने सिंगिंग और स्टेज शोज करके घर संभाला और शान ने वहीं से सीखा, टैलेंट से जरूरी होता है हिम्मत। स्कूलिंग मुंबई में हुई पर दिमाग में एक ही चीज थी, म्यूजिक। लेकिन बॉलीवुड में एंट्री बिल्कुल भी इजी नहीं थी। उन्हें शुरुआत में एड्स के जिंगल्स गाने पड़े, मैगी, पेप्सी, गोल्ड स्पॉट, आपने सुना होगा, पर शायद आप पहचान नहीं पाओगे कि वो आवाज शान की ही थी। यही वो फेस था जहां एक फ्यूचर सुपरस्टार क्वाइटली अपनी फाउंडेशन बना रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं सिंगर तो बहुत टैलेंटेड है, मगर इस मुकाम तक वो कैसे पहुंचा, हमें उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता। तो उसकी आगे की स्टोरी बताने के लिए मैं बस अभी गया और अभी आया भी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए। ये गाना आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन
1: रोडवेज वाले?
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो? आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

कभी सोचा है कि एक एल्बम किसी सिंगर की पूरी किस्मत बदल सकती है? और ऐसा सच में होता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सिंगर शान की। 90s के एंड में शान ने अपना इंडी पॉप एल्बम तन्हा दिल रिलीज किया, और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री है। एल्बम का टाइटल ट्रैक इतना हिट हुआ कि शान ओवरनाइट यूथ आइकन बन गए। लॉन्ग हेयर, कूल स्माइल, सॉफ्ट रोमांटिक वॉइस, हर लड़की का क्रश, हर लड़के का स्टाइल इंस्पिरेशन। एमटीवी और चैनल वी पर उनका राज था। उन्होंने प्रूव किया कि बॉलीवुड के बिना भी सिंगर सुपरस्टार बन सकता है। इस सक्सेस ने बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए, और फिर आए ऐसे सॉन्ग जैसे कि मुस मुस हसी, याद है ये गाना? और फिर उसके बाद वो पहली बार। अच्छा, मेरी आवाज में गाना भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन शान भाजी की आवाज में जब भी हम लोग गाना सुनते हैं तो एक अलग ही मूड में पहुंच जाते हैं। और ये जो गाने थे वो सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक जनरेशन की लव स्टोरी बन गए थे। लेकिन बॉलीवुड में रियल टेस्ट अभी भी बाकी था, और आगे क्या हुआ इसके बारे में बताऊंगा मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर एक गाना चला रहा हूं। वापस आकर सिंगर शान की आगे की लाइफ के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
2: तुमने क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर मुझे भी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हर सिंगर की लाइफ में एक गाना जरूर होता है जो उनकी लाइफ को हमेशा के लिए अमर बना देता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं बॉलीवुड सिंगर शान की। साल था 2000। 2000s में शान बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में फुल्ली एक्टिव हो गए थे और फिर आए ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स जैसे कि चांद सिफारिश फ्रॉम द मूवी फना। फिर उसके बाद आया गाना जब से तेरे नैना, ये गाना तो सबको याद होगा सावरिया मूवी का, और थ्री इडियट्स मूवी का ये गाना तो शायद आज भी हर इंसान अपने दोस्त के लिए जरूर गाता है, बहती हवा सा था वो, याद आया। तो ये सारे गाने ब्लॉकबस्टर बन गए, हर मूड का गाना, रोमांस, फ्रेंडशिप, हार्ट ब्रेक, मस्ती, शान हर जगह फिट थे। उनकी आवाज में एक इनोसेंस थी जो हीरो को रिलेटेबल बना देती थी। अवार्ड्स मिलने लगे, फेम पीक पर था, लेकिन शान सिर्फ सिंगर नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने टीवी होस्टिंग भी की, सारे गामापा इस जैसे शोज से वो हर घर का फेवरेट फेस बन गए थे। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन था, वॉइस भी सुपरस्टार और पर्सनैलिटी भी सुपरस्टार। और फिर आगे कैसे उन्होंने इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया, करेंगे इसके बारे में और भी बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर अब जो गाना चला रहा हूँ ये है आदित्य भारद्वाज की आवाज में। सुनिए इस गाने को, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तुमने क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

चेंज इज द नीड ऑफ टाइम। हर इंसान को वक्त के साथ बदलना पड़ता है, और जब दुनिया बदलती है तो क्या सिंगर्स भी खुद को बदल पाते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड आपने भी सुना होगा कि जब वक्त बदलता है तो लोग भी अपने आप को बदलते हैं, पर क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में शान भी अपने आप को बदल पाए थे? म्यूजिक इंडस्ट्री डिजिटल हो रही थी, इंडी पॉप ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, न्यू सिंगर्स का फ्लड आ गया, कई सिंगर्स इस फेस में बिल्कुल भूल से गए थे, गुम हो गए थे। और लेकिन शान, इन्होंने अपनी वर्सेटिलिटी दिखाई, उन्होंने रीजनल सॉन्ग्स गाए, इंडिपेंडेंट सिंगल्स गाए, लाइव कंसर्ट्स पर फोकस किया, इंटरनेशनल टूर्स में इंडियन ऑडियंस उन्हें सिर्फ सिंगर नहीं, नॉस्टैल्जिया मशीन की तरह ट्रीट करती थी। उन्होंने एक बात समझ ली थी, ट्रेंड चेंज होता है पर अच्छी आवाज कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। फैमिली लाइफ में भी वो ग्राउंडेड रहे, अपनी वाइफ राधिका और बच्चों के साथ सिंपल लाइफ प्रेफर करते हैं हमेशा, और हमेशा से सिंपल लाइफ के साथ उन्होंने फेम को भी संभाला। और कैसे वो आगे सबसे बड़े लेजेंड बन गए, करेंगे इसके बारे में बात। मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये साल 2020 वाला फेमस गाना, जिसको आप सभी ने अपने रिपीट पर जरूर सुना होगा, ब्राउन मुंडे। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके,
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन,

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर

सक्सेस का असली मतलब क्या होता है एक सिंगर के लिए, फेम या फिर लोगों के दिल में जगह। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन प्लेबैक सिंगर शान की। आज शान एक लेजेंड की तरह देखे जाते हैं, उन्होंने हजारों गाने गाए, पर सबसे बड़ी अचीवमेंट है उनकी आवाज सुनते ही लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। न्यू सिंगर्स उन्हें आइडल मानते हैं, ऑडियंस उन्हें अपनी लाइफ के मोमेंट से कनेक्ट करती है। कॉलेज लव स्टोरी हो या स्कूल फेयरवेल या फिर कार ड्राइव, शान का कोई ना कोई गाना बैकग्राउंड में जरूर होता है। उनकी जर्नी हमें सिखाती है अगर आप सच में अपने पैशन से प्यार करते हो तो वक्त आपको टेस्ट जरूर करेगा पर तोड़ नहीं पाएगा। और इसीलिए शान सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक फीलिंग है, चाहे फिर कॉलेज रोमांस हो या फिर एक बुढ़ापे का प्यार। तो चलिए इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं निकलता हूं यहां से, मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। एंड ये थी स्टोरी प्लेबैक सिंगर शान की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। नंबर है मेरा 9654896896। और आगे आप किनके बारे में स्टोरी सुनना चाहते हैं वो भी हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये कर

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो एंड वेलकम, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और ये शो उनके लिए नहीं है जो ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि कोई कितना बड़ा बन गया, बल्कि ये शो उनके लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि वो बड़ा बना तो कैसे। क्योंकि बिजनेस की असली कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती जब अखबार में हेडलाइन आती है, वो उससे बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है। उस दिन से जब किसी ने सिस्टम को ध्यान से देखा और खुद से ये सवाल पूछा, क्या इसे थोड़े अलग तरीके से किया जा सकता है। आज की कहानी न मोटिवेशन लेक्चर की है, न ये बताने की है कि सब कुछ पॉसिबल है। आज की कहानी बस ये दिखाएगी कि जब रिसोर्सेज कम हो, ऑप्शन सीमित हो और रूल्स बहुत सख्त हो, तब भी लोग रुकते नहीं हैं, बस चुपचाप अपना काम करते हैं। आज जिस नाम की मैं बात करने वाली हूँ वो आज बैंकिंग का जाना पहचाना नाम है। इतना जाना पहचाना कि हम रोज उसके बोर्ड्स देखते हैं, एप्स यूज करते हैं, एड्स देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इसकी शुरुआत किस माहौल में हुई होगी। आज अगर मैं आपसे कहूं कि इस कहानी की शुरुआत इतने पैसों से हुई थी जिसमें आज मेट्रो सिटी में 2 BHK का सपना भी पूरा नहीं हो पाता, तो शायद आप एक पल के लिए रुकेंगे। और अगर मैं ये भी कहूं कि उस वक्त इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम ऑलमोस्ट पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल में था, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जगह बहुत कम थी, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा थे और फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज लगभग मौजूद नहीं थी, तो ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज बिजनेस को लेकर हमें बहुत क्लैरिटी दिखती है, लेकिन 40 साल पहले क्लैरिटी नहीं थी, सिर्फ अनसर्टेनिटी थी। लोग कहते हैं ये सही समय था या मार्केट रेडी थी, लेकिन असल में उस समय कोई रेडी नहीं था, न मार्केट, न सिस्टम और न ही रूल। फिर भी किसी ने उस माहौल में ये डिसाइड किया कि वो सिर्फ शिकायत नहीं करेगा बल्कि काम करने की कोशिश करेगा। और ये एपिसोड बैंक्स की टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाएगा, ये एपिसोड नंबर्स की बारिश में भी नहीं जाएगा, ये एपिसोड बस ये समझाने की कोशिश करेगा कि जब रास्ता साफ नहीं होता तब लोग रास्ता कैसे बनाते हैं। आज के शो में मैं बात करूंगी एक ऐसे इंसान की जिसका सपना कुछ और था, एक ऐसे दौर की जहां बदलाव आसान नहीं था और एक ऐसे फैसले की जो उस वक्त बहुत छोटा लग रहा था लेकिन समय के साथ बहुत बड़ा साबित हुआ। तो अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं या सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि बड़े नाम कैसे बनते हैं, तो आज का एपिसोड ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी ये नहीं बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन ये जरूर दिखाएगी कि किसी ने क्या किया। तो अब सवाल यही है, इतने कंट्रोल सिस्टम में और बिना किसी बड़े नाम के पीछे खड़े हुए वो शख्स कौन था जिसने ये सफर शुरू किया, और वो कौन सा नाम है जो आज इंडिया के सबसे ट्रस्टेड फाइनेंशियल नेम्स में गिना जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। और हमने बात की है उस माहौल की जहां क्लैरिटी बहुत कम थी, रूल्स बहुत ज्यादा थे और रिसोर्सेज बहुत कम थे। अब वक्त है उस नाम को सामने लाने का जिसके चारों तरफ आज इंडिया का एक बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खड़ा है। आज की कहानी है उदय कोटक की। आज कोटक महिंद्रा बैंक एक जाना पहचाना नाम है, इतना फेमिलियर कि हम रोज इसके बोर्ड्स देखते हैं, एप्स खोलते हैं, एड्स देखते हैं और शायद कभी ये नहीं सोचते कि इसकी शुरुआत किस तरह से इंडिया में हुई थी। ये कहानी उस दौर की है जब इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर ऑलमोस्ट पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल में था। बैंकिंग का करीब 97% हिस्सा सरकारी बैंकों के पास था। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए ना फ्लेक्सिबिलिटी थी और ना ज्यादा मौके। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा थे। जो लोग उधार लेते थे उन्हें 16-17% तक देना पड़ता था और जो पैसा जमा करते थे उन्हें बहुत कम रिटर्न मिलता था। अब ऐसे माहौल में कोई नया बिजनेस शुरू करना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि रिस्की माना जाता था। और यहाँ पर उदय कोटक का नाम स्लोली पिक्चर में आता है। उदय कोटक आज बैंक के डेली ऑपरेशंस नहीं संभालते लेकिन उनकी सोच आज भी इस इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन है। ये कोई फ्लैशी एंटरप्रेन्योर नहीं थे, न हेडलाइंस के पीछे भागने वाले, न शॉर्टकट्स में भरोसा करने वाले। वो क्वाइटली सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो देख रहे थे कि सबसे ज्यादा फोर्स छोटे बिजनेसेस पर है। बड़ी कंपनियों के पास एक्सेस था, कनेक्शंस थे, लेकिन छोटे सप्लायर्स, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हाई इंटरेस्ट और डिलेज में फंसे हुए थे। उदय कोटक ने इसे कंप्लेन की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे गैप की तरह देखा, एक ऐसी जगह जहां कुछ बेहतर किया जा सकता था। और यही पॉइंट इस कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है क्योंकि ये स्टोरी मैंने ड्रीम देखा वो वाली नहीं है, ये स्टोरी है मैंने प्रॉब्लम देखी। ये उस समय की बात है जब बिजनेस शुरू करने का मतलब था इयर्स ऑफ पेशेंस, रेगुलरिटी प्रेशर और बहुत लिमिटेड मार्जिन फॉर एरर। और फिर भी उदय कोटक ने इस माहौल में एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। अब सवाल ये नहीं है कि उनका नाम क्या है, वो तो सामने आ चुका है। अब सवाल ये है वो इंसान जिसने इतने कंट्रोल सिस्टम में रिस्क लेने का फैसला किया वो आखिर बना कैसे, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो किस तरह के घर से आए थे और क्या वो शुरू से फाइनेंस और बैंकिंग की दुनिया में ही रहना चाहते थे। उनके बचपन की कहानी, उनके शुरुआती सपने और वो इंजरी जिसने उनकी डायरेक्शन बदल दी, ये मैं आपको बताऊंगी इस गाने के बाद। गाना सुनते हैं

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो है मन उदास का पे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ जो भी है पास है उस पे नाज बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

थैंक्स अ लॉट है गाने का नाम, क्योंकि ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। वेलकम बैक टू बिजनेस अनप्लग्ड। अब तक हमने उस नाम को तो जान लिया है और उस दौर को भी जिसमें ये कहानी शुरू हुई। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस टाइम में जब कोई बैलेंस शीट नहीं थी, कोई बैंकिंग प्लान नहीं था और ना ही कोई बिजनेस रोड मैप, क्योंकि हर बड़ी कहानी किसी छोटे नॉर्मल बचपन से ही शुरू होती है। उदय कोटक का बचपन किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटअप में नहीं बीता, ना कोई प्रिविलेज वाला एनवायरमेंट, ना कोई शॉर्टकट वाला रास्ता। बचपन से ही इनका सपना बैंकर बनने का नहीं था, बल्कि वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। क्रिकेट सिर्फ इनका शौक नहीं था, बल्कि सीरियस इंटरेस्ट था। प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, रूटीन, सब कुछ ठीक उसी तरह जैसे एक एस्पायरिंग प्लेयर करता है। लेकिन लाइफ ने उन्हें यहाँ पॉज में डाल दिया। एक इंजरी आई और क्रिकेट का रास्ता वहीं रुक गया। ये वो मोमेंट होता है जहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, कुछ लोग डायरेक्शन बदलते हैं। उदय कोटक ने डायरेक्शन बदली। अब बात करते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड की। कोटक फैमिली कॉटन ट्रेडिंग से जुड़ी हुई थी। घर में बिजनेस था, नंबर की समझ थी, रिस्क और प्रॉफिट की बातें घर में कॉमन थी। लेकिन उदय कोटक फैमिली बिजनेस में खुद को पूरी तरह से फिट नहीं देख पा रहे थे। ये कोई रिबेलियन नहीं था, ये बस क्लैरिटी थी कि उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना था। एडुकेशन के दौरान इनका झुकाव फाइनेंस और सिस्टम की तरफ बढ़ा। बुक्स ने उन्हें नंबर समझाए, लेकिन असली लर्निंग उन्हें ऑब्जर्वेशन से मिली। वो देख रहे थे कि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, कौन आसानी से पैसा ले पाता है, कौन स्ट्रगल करता है, कौन रूल्स के अंदर रहकर फायदे में रहता है और कौन उन्हीं रूल्स के नीचे दब जाता है। यहीं से इनकी सोच शेप लेने लगी। ये कोई अचानक आया आइडिया नहीं था, ये धीरे धीरे बनी हुई अंडरस्टैंडिंग थी। एजुकेशन ने इन्हें कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन सर्टेनिटी नहीं। और शायद यही वजह थी कि वो जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। वो सीखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे और खुद को तैयार करते रहे। अब सवाल ये है कि जब क्रिकेट का सपना टूट गया, फैमिली बिजनेस से अलग रास्ता चुना और सिस्टम की कमजोर या साफ दिखने लगी, तो पहला प्रैक्टिकल कदम इन्होंने क्या उठाया? बिना बड़ा पैसा, बिना पावर और बिना किसी गारंटी के इन्होंने बिजनेस की शुरुआत कैसे की? अब पहले बिजनेस आइडिया की डिटेल और वो दौर जब फेलियर इनके सबसे पास खड़ा था, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने का नाम है अनस्टॉपेबल और गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

गाना है ध्वनि भानुशाली की आवाज में और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। हम बात कर रहे हैं उदय कोटक की और अभी तक हम इनके बैकग्राउंड को समझ चुके हैं और उस सोच तक पहुंच चुके हैं जो धीरे धीरे शेप ले रही थी। अब आते हैं उस मोड पर जहां ऑब्जर्वेशन एक्शन में बदलती है। साल था 1985। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो चीजें लॉजिकल लगती हैं, लेकिन

सोचा अगर छोटे बिजनेस को कम इंटरेस्ट पर शॉर्ट टर्म फंडिंग मिल जाए और इन्वेस्टर्स को बेटर रिटर्न, तो दोनों का फायदा हो सकता है। यहाँ से बिल डिस्काउंटिंग का आइडिया आया। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एसएमई के पास बड़े क्लाइंट्स के बिल होते थे, पेमेंट आने में टाइम लगता था। कोटक कंपनी इन्हें बिल्स के बदले जल्दी पैसा देती थी और इन्वेस्टर्स को रीजनेबल रिटर्न मिलता था। कंसेप्ट सिंपल था लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्की, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, टीम छोटी थी, कैपिटल कम था और सबसे बड़ी चुनौती थी ट्रस्ट, क्योंकि फाइनेंस में सबसे पहले पैसा नहीं नाम चलता है और उदय कोटक उस वक्त कोई बड़ा नाम नहीं थे। इस फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, उनकी मुलाकात होती है आनंद महिंद्रा से। आनंद उस वक्त हार्वर्ड से पढ़कर लौटे थे और महिंद्रा ग्रुप में काम कर रहे थे। उदय कोटक ने उन्हें एक मॉडल समझाया जिसमें महिंद्रा के सप्लायर्स को कम इंटरेस्ट पर जल्दी पेमेंट मिल सकता था। ये सिर्फ बिजनेस पिच नहीं थी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्वर्सेशन थी। आनंद महिंद्रा को मॉडल समझाया, पोटेंशियल दिखा और यहीं से इस कहानी की डायरेक्शन थोड़ी और क्लियर हो जाती है। लेकिन पार्टनरशिप से पहले एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल था, पैसा कहाँ से आएगा? उदय कोटक ने अपना हिस्सा उधार लेकर जुटाया, फ्रेंड से सपोर्ट लिया, रिस्क लिया। ये वो स्टेज होती है जहाँ फेलियर बहुत पास खड़ी होती है, एक गलत डिसीजन, एक गलत कैलकुलेशन और सब खत्म। लेकिन उस दौर में एक चीज क्लियर थी, डिसीजन स्लो थे लेकिन सोच बहुत मेजर थी। अब सवाल ये है, बिजनेस शुरू तो हो गया, आइडिया काम तो करने लगा, पार्टनरशिप भी बन चुकी थी, लेकिन क्या यही इनफ था एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए? और वो मोमेंट कब आया जब एक स्मॉल फाइनेंशियल सेटअप ने एक बड़े स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना शुरू किया, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन गाने के बाद गाना सुनते हैं, गल मीठी मीठी बोल गाने का नाम है। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। हम बात कर रहे हैं उदय कोटक की। हमने ये जाना है अब तक कि आइडिया कैसे एक्शन बना और कैसे एक स्मॉल फाइनेंशियल सेटअप धीरे धीरे शेप होने लगा। अब बात करते हैं उस फेज की जहां सिर्फ सर्वाइव करना आसान नहीं था बल्कि डिसाइड करना पड़ता है कि आगे बढ़ना कैसे है। जब आनंद महिंद्रा के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई तो सिर्फ पैसा नहीं आया बल्कि एक पहचान भी आई। यहीं से कंपनी के नाम पर सीरियसली सोचा गया। उदय कोटक का मानना था कि फाइनेंस में सबसे बड़ी चीज रेपुटेशन होती है, इसीलिए इन्होंने कंपनी का नाम रखा कोटक महिंद्रा। सिंपल लॉजिक था, अगर नाम सामने है तो जिम्मेदारी भी सामने है। धीरे धीरे कंपनी ने सिर्फ बिल डिस्काउंटिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा, कैपिटल मार्केट्स में एंट्री हुई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑटो फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एक एक करके नई आइडियाज जुड़े। ये एक्सपेंशन एक साथ नहीं हुआ था, हर स्टेप मेजर था। उदय कोटक का फोकस था ग्रोथ दिखनी चाहिए लेकिन कंट्रोल के साथ। रिसोर्सेज अब भी अनलिमिटेड नहीं थे, रूल्स अब भी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो चुकी थी। टाइम के साथ कंपनी ने बैंकिंग लाइसेंस की तरफ कदम बढ़ाया और कोटक महिंद्रा फाइनली एक फुल फ्लेज बैंक बना। आज अगर नंबर्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। आज बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीब 4.18 लाख करोड़। ये वो स्टेज है जहां बाहर से देखने पर सब स्मूथ लगता है लेकिन अंदर प्रेशर कभी खत्म नहीं होता। रेगुलेशंस, कॉम्प्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, हर स्टेप पर बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। इतने बड़े स्केल पर पहुंचने के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इतने साल सिस्टम के अंदर रहकर उदय कोटक खुद इस पूरे सफर को कैसे देखते हैं और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनका सबसे सिंपल ग्राउंडेड मैसेज क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।
1: A plate is a myth when the rent is due, but hunger is home. It hurts straight in the ribs when I suffer alone. My stomach be yelling louder than my prayers at night. My mind telling me to quit, I'ma take the advice. Mama prayed for the light while I'm restraining the spark. Pops struck through the dark, but now I'm breaking his heart. I sense the disappointment in the words they utter. Teardrops that weigh tons come from hurting mothers. Hate what I see in the mirror, I'm the cause for the shame. Reflections on my failures always calling my name. Metal shackles are the only inheritance of the firstborn. Add to the trauma, so I carry the curse on. Masking the emptiness, my smile is a

वेलकम बैक टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं आपके साथ गीत हूँ। अब तक हमने एक पूरा सफर देखा, एक आइडिया से लेकर एक इंस्टीट्यूशन तक। लेकिन किसी भी बिजनेस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नंबर नहीं होते, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो सोच जो एंड तक साथ रहती है। उदय कोटक खुद मानते हैं कि बिजनेस में कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता जो सब कुछ बदल दे, सब कुछ धीरे धीरे बदलता है। उनके मुताबिक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहली है सावधानी। हर अपॉर्चुनिटी को जंप करके पकड़ने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी रुक कर देखना ज्यादा सही होता है। दूसरी है सरलता। प्रोडक्ट हो या डिसीजन, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो लॉन्ग रन समस्या बनते हैं। और तीसरी है विनम्रता। उदय कोटक मानते हैं कि फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानने लगते हैं। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो उस वक्त रिस्की थे, इंश्योरेंस में एंट्री, ग्लोबल पार्टनरशिप, न्यू फाइनेंसिंग मॉडल, लेकिन हर बार एक चीज कॉमन रही, उन्होंने टीम पर भरोसा किया। उनका सिंपल मैसेज था, जाओ सीखो, गलतियां करो, लेकिन रुकना मत। कोटक महिंद्रा की कहानी ये नहीं कहती कि सब कुछ परफेक्ट था, बस ये दिखाती है कि क्लैरिटी के साथ लिए गए छोटे फैसले समय के साथ बड़े रिजल्ट देते हैं। और शायद यही वजह है कि 30 लाख से शुरू हुई ये जर्नी आज 4.18 लाख करोड़ के इंस्टीट्यूशन तक पहुंच चुकी है। तो अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी किसी फेज में फंसे हुए हैं तो ये कहानी कोई शॉर्टकट तो नहीं देगी बॉस। ये बस ये याद दिलाती है कि सिस्टम को समझना, खुद को कंट्रोल में रखना और पेशेंस बनाए रखना कभी आउटडेटेड नहीं होता है। आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बिजनेस जर्नी के साथ, एक और नाम के साथ, एक और सोच और एक और कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

0: 89.6 FM.
1: कुछ है?
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी इमेजिन किया है एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक सिर्फ फूल ही फूल हो, ना ट्रैफिक का शोर, ना शहर की भाग दौड़, बस पहाड़, बादल और हवा में घुली हुई फूलों की खुशबू, जैसे किसी पेंटर ने जमीन पर अपने सारे कलर्स गिरा दिए हों। वो कहा है कि हर जगह फूल हो जरूरी तो नहीं, कभी कभी एक जगह ही पूरी जिंदगी महका देती है। और इसी के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त आरजी अंजलि, और आज कल्चर कारवा में हम चल रहे हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है। तो आइए आखिर जानते हैं ये जगह है कहाँ। आज बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की, यानी कि हिमालयाज की गोद में बसी एक खूबसूरत वैली जो कि इंडिया के उत्तराखंड में है। लगभग 12,000 फीट की हाइट पर बसी ये वैली सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि नेचर की लाइफ पेंटिंग है। और सबसे मैजिकल बात, ये वैली साल भर नहीं खुलती, सिर्फ मॉनसून के कुछ महीनों में ये पूरी दुनिया कलर से भर जाती है। वो कहा है कि कुछ खूबसूरतियाँ परमानेंट नहीं होती, शायद इसलिए और भी खास लगती है। आज बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की, वापस आकर जानेंगे आखिर इस वैली की डिस्कवरी कैसे हुई। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजली और आज हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। तो चलिए आइए जानते हैं आखिर इसकी डिस्कवरी हुई कैसे। कहते हैं 1931 में ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ यहाँ एक्सीडेंटली पहुंच गए थे और जब उन्होंने इस जगह को देखा तो बस देखते रह गए और तभी इस जगह का नाम उन्होंने रख दिया वैली ऑफ फ्लावर्स। सोचिए एक ऐसी वैली जहाँ नेचर खुद सरप्राइज बनकर सामने आया। वो कहा है कि कुछ जगह तक रास्ते नहीं ले जाते, किस्मत ले जाती है, इसलिए वैली ऑफ फ्लावर्स को फूलों का समंदर कहा जाता है। यहाँ 500 से भी ज्यादा स्पीशीज के फ्लावर्स मिलते हैं, ब्लू पॉपी, कोबरा लिली, ऑर्किड्स, ना जाने कितने सारे फ्लावर्स। और बस ये फ्लावर्स धीरे धीरे कुछ हफ्तों में पूरे वैली का कलर पैलेट बदल देते हैं। कभी वैली पिंक नजर आती है, कभी येलो तो कभी पर्पल, जैसे नेचर हर दिन नई पेंटिंग बना रहा हो। इस वैली से जुड़े बहुत सारे माइथोलॉजी और बिलीफ्स भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
4: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। अगर इस वैली की बात की जाए तो बहुत सारे माइथोलॉजी और बिलीफ जुड़े हैं इस वैली से। लोकल स्टोरीज के मुताबिक ये जगह परियों का गार्डन भी कही जाती थी। कई लोग मानते थे कि यहाँ देवता और परियां आती हैं। और ऑनेस्टली जब बादल पहाड़ों को टच करते हैं और फूल हवा में मिलते हैं तो ये कहानियाँ सच सी लगने लगती हैं। वो कहा है कि हर खूबसूरत जगह के पीछे एक कहानी जरूर होती है, यही बताती है हमें वैली ऑफ फ्लावर्स। ये वैली सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत डेलिकेट भी है, इसलिए यहाँ प्लास्टिक और पॉल्यूशन पर स्ट्रिक्ट रूल है, क्योंकि कुछ जगहों को सिर्फ एंजॉय नहीं प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि नेचर हमें इतनी खूबसूरती फ्री में देता है, शायद केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इस वैली को आज भी उतना ही खूबसूरत बनाए रखने की कोशिश चलती है। लेकिन ये वैली सिर्फ देखने के लिए नहीं, यहाँ पर ट्रैक करने का भी अपना एक अलग मजा है। वैली ऑफ फ्लावर्स से जुड़ी हुई और भी बातें हैं जानेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: बहुत कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: मैं मास म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? नहीं, मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रोल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
4: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
5: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं। मैं हूँ एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती है। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियाँ आगे की

0: जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। और आज हमने जाना है कितनी खूबसूरत हो सकती है कोई वैली, लेकिन अगर इस वैली की बात की जाए तो यहाँ तक पहुँचना इजी नहीं, ट्रैक करना पड़ता है इस पूरी वैली तक पहुँचने के लिए। बीच में आते हैं पहाड़ी रास्ते, ठंडी हवा और कभी कभी बारिश। पर शायद यही स्ट्रगल की वजह से जब वैली सामने आती है तो आंखों को यकीन नहीं होता कि कोई वैली वाकई इतनी खूबसूरत हो सकती है जैसे नेचर ने मानो रिवॉर्ड दिया हो। अगर बात की जाए इस वैली की तो वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये रिमाइंडर है कि दुनिया में अब भी ऐसी जगहें हैं जहाँ नेचर इंसान से ज़्यादा पावरफुल लगता है। वो कहा है कि हर फूल की उम्र छोटी होती है पर उसकी खुशबू याद रह जाती है, बिल्कुल कुछ अफसानों की तरह। अगर कभी जिंदगी में बहुत भाग दौड़ लगने लगी तो एक बार वैली ऑफ फ्लावर्स जरूर जाना। हो सकता है जो सुकून आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको इस वैली में मिल जाए। सो आज हमने बात की वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में। कल्चर कारवा में आज हमने जाना एक ऐसी जगह के बारे में जो अपनी महक से हमारी जिंदगी को और खूबसूरत बना देती है। कल फिर मिलेंगे एक और जगह, एक और कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजी अंजलि।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? नहीं, मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट टाइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती है। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
3: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: डोंट यू थिंक कि अब गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर गई है? देखो अभी शाम हो रही है, 5:02 हुए हैं एंड बाहर की गर्मी को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 2 या 3 बज रहे हैं, है कि नहीं? चलो मैं तो ऐसी आ गया आप लोगों को बताने के लिए, मैं आ चुका हूँ। अब अगले 3 घंटे तक बहुत सारी बातें होने वाली है, गाने भी चलेंगे एंड वेलकम बैक आप सभी का मंडे की शाम को, क्योंकि शाम जैसी लग नहीं रही है और आई डोंट नो कब ये मौसम से राहत मिलेगी, मतलब कब इस गर्मी से हमें राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तो ये शुरू ही हुई है। मैं डरा नहीं रहा हूँ बट ये रियलिटी है। खैर मेरा शो भी शुरू हो चुका है और शो शुरुआत होते ही गाना चलता है, तो आप सभी के लिए गाना वापस आ रहा हूँ बस 2 मिनट में। ये गाना जैसे खत्म होगा मैं आता हूँ।

सैटरडे और संडे जैसा भी गया हो, एक तो बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और वो ये है कि गर्मी से भरा हुआ ही गया था। संडे को जो मेरे प्लान्स थे ना, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। मैंने सोचा था यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा घूमने, कहीं नहीं जा पाया, घर में बैठा रह गया। और देखो कितनी जल्दी टाइम बीतता है ना, मई की 18वीं तारीख है आज और ऐसे दिन बीत रहे हैं जैसे कि पानी की तरह, मतलब पानी जैसे बहता है ना उसी तरह से दिन बीत रहे हैं। और इसी तरह से मेरा शो भी खत्म हो जाएगा 3 घंटे के बाद, अभी तो शुरुआत हुई है और ऐसे ही 3 घंटे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा आप लोगों को। खूब सारे गाने बजेंगे, बातें भी होंगी, तो दिल्ली से लेके फरीदाबाद और नोएडा गुड़गांव सब जगह की बातें कर लूंगा, एंड मोस्टली फरीदाबाद के बारे में बात होगी, डोंट वरी। और इसके साथ साथ आप सभी को बताऊं, पूरे देश में बहुत सारी अपडेट्स आई हैं नई नई, और क्या है वो अपडेट्स उसके बारे में भी करेंगे हम लोग बात। गर्मियों के लिए कुछ अलर्ट्स जारी किए गए हैं, कौन से है वो अलर्ट्स जो कि सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, करेंगे उसके बारे में बात, कैसे आप हीट वेव से बच सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड 12वीं के बच्चों के रिजल्ट आए थे अभी रिसेंटली, कुछ बच्चे खुश नहीं है अपने पेपर के मार्क्स से, कुछ बच्चे बहुत खुश हैं, और खुश वो बच्चे हैं जिनको पास होने की भी उम्मीद नहीं थी और पास हो गए हैं। और जो बच्चे जिनको लग रहा है कि मार्क्स कम है, आप लोग रीइवैल्यूएशन करवा सकते हो, कैसे करवा सकते हो सब कुछ बताऊंगा मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर गर्मियों वाला गाना, मतलब गर्मी में जहां जाने का मन करता है ना वो वाला गाना सुनिए, इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

मेरा आवाज अच्छी नहीं, आई नो नहीं, आवाज अच्छी है बट गाने के मामले में मैं थोड़ा सा बेसुरा हूँ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। सरकार ने कह दिया है कि प्लीज प्लीज प्लीज जितना हो सके उतना घर के अंदर रहिए, क्योंकि हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और लू चल सकती है। लू का बेसिकली येलो अलर्ट है, तापमान 45 डिग्री तक आसानी से पहुंच सकता है और ये अलर्ट है 19 और 23 मई को, मतलब कल और परसों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ साथ 23 तारीख को NCR में लू चलने से येलो अलर्ट फिर से हो सकता है। तो मतलब 45 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर पहुंच जाए, समझ लेना येलो अलर्ट है और हीट वेव की घोषणा हो चुकी है। तो देखो, हीट वेव इतनी इजी, इतनी आसान चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हलवा है, आप लोग सोच रहे हो अरे हीट वेव भी तो देख लेंगे, कोल्ड वेव भी देख ली थी। कोल्ड वेव एक बार को झेली जा सकती है क्योंकि हम लोग कपड़े पहन लेते हैं ऊपर से। हीट वेव से आप कैसे बच सकते हो, इसके बारे में करेंगे बात, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च करी है ताकि मैं फरीदाबाद की पब्लिक को सब कुछ बता सकूं। फिलहाल आप लोगों को बाहर नहीं आना, क्योंकि गाने का नाम है बहारा, तो आना नहीं है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी, आई नो इट वॉज अ बैड जोक, बट सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन
1: रोडवेज वाले?
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे भैया उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं। रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे उठा लेते हैं।
0: अरे यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो। हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

आदित्य अखाड़ी की आवाज में ये खूबसूरत सा ट्रैक था और इसी गाने के साथ स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर में कल और परसों, एंड साथ ही साथ 23 मई को फिर से लू चल सकती है। आज दिन में भी चल रही थी, दिन क्या अभी भी चल रही है बाहर, अगर आप खोलो तो मतलब खिड़की खोलो शीशा खोलो आपको पता लग जाएगा। एंड मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी और रिसर्च करते मुझे पता चला कि हम लोग हीट वेव से कैसे बच सकते हैं। देखो मेनली आपको क्या करना है, दिन में 12 से 4 बजे तक जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड करना है। दूसरा, घर के पर्दे वगैरह लगा के रखो, दरवाजे बंद करो, डायरेक्ट सनलाइट कम होनी चाहिए। फैंस के साथ अगर पॉसिबल हो तो कूलर भी यूज कर लो और साथ में वेंटिलेशन रखो घर के अंदर, विंडोज खोल दो जब बाहर थोड़ा ठंडा हो जाए तो। एंड हाँ, एक और चीज, बार बार आपको पानी पीना, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकती है और प्यास लगे तब तक का वेट मत करना, पानी पीते रहिए, ORS पीजिए, नींबू पानी पीजिए, छाछ, नारियल पानी, ये सब चीज़ें आप लेते रहिए, ये सब हेल्पफुल होती है। एंड इसके साथ साथ कॉटन के लाइट कलर्ड कपड़े पहनो, लूज कपड़े पहनो, ज़्यादा फायदा रहेगा। और सर को कवर करके चलना है इतनी गर्मी में, और ट्राई करना ऑयली फूड अवॉइड करो, अभी समोसे खाने का मौसम नहीं है तो मत खाना ये समोसे वगैरह। आप खा सकते हो फ्रूट्स, कौन से, तरबूज खरबूज, ये सब खाओ, आप खूब दबा के खाओ। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाओ, ऐसी खूब सारी बातें और भी लेकर आते रहेंगे। एंड हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि 12वीं के बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट आए थे अभी, तो री इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
2: तुमने क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर उधर भी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मन तो मेरा कर रहा था कि इस गाने पे डांस करूं, मगर डांस तो उन बच्चों ने किया होगा जिनको उम्मीद नहीं थी पास होने की, बट वो पास हो गए। और कुछ बच्चे निराश भी हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे मार्क्स और भी आ सकते थे, मुझे लग रहा है पेपर में गलती हुई है। तो डोंट वरी, मैं हूं ना इधर, मतलब मैं आप सभी को बताने आया हूं कि आप प्री इवैल्यूएशन करवा सकते हैं और इसकी फीस भी कम हो जाएगी, और अगर आपके नंबर बढ़ेंगे तो पूरी फीस वापस भी मिल जाएगी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। सीबीएसई ने क्लास 12 के जितने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट निकाले थे तो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर उन्होंने लोगों को शिकायत है, लोग कह रहे हैं हमें कम नंबर आए हैं। तो जितने भी बच्चों को लग रहा है कि उनके कम नंबर आए हैं, आप अपनी आंसर शीट देख सकते हो और उसके आपको लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये, और वैलिडेशन के लिए भी 100 रुपये लगेंगे। मगर किसी भी क्वेश्चन की जवाब के लिए चेकिंग अगर आप फिर से करवाना चाहते हो, आपको लगता है ये आंसर तो मैंने सही लिखा था, मार्क्स कम आए हैं, तो आप फिर से चेकिंग कराने के लिए एक क्वेश्चन के 25 रुपये दोगे, और अगर नंबर बढ़ेंगे तो आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। तो आप लोग रीवैल्यूएट कर सकते हो, सीबीएसई की वेबसाइट पर जाइए और उधर जाके देखिए कि आप कैसे कैसे स्टेप्स के वाइज आगे बढ़ सकते हैं। एंड हाँ, बचपन में पापा कुछ कहते थे मेरे, क्या कहते थे बताऊंगा आप सभी को, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मगर इस गाने के बाद बताऊंगा। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे भाई यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो?
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन
2: ना,

अभी मैं थोड़ी देर पहले 12वीं के बच्चों के एग्जाम रिजल्ट्स की बात कर रहा था, और जब हमारा रिजल्ट आता था ना, तो उस टाइम बहुत कुछ सुनने को मिलता था, क्योंकि आई वॉज नॉट दैट मच गुड इन माई स्टडीज, बट ठीक है, पास तो हो गए ना। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मंडा आप सभी के साथ। बचपन में काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बातें बोलते हैं, मतलब जब हम छोटे थे हम सबको याद होगा कुछ ना कुछ पेरेंट्स बोलते थे, मार्क्स कम आए तो सुनने को मिलता था, और एक मिलती थी कि पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा ना अगर, तो हम तेरे लिए एक दुकान खोल के रख देंगे, उसमें बैठियो दिन भर। यार अगर काश वो दुकान खुल जाती। और मेरे पापा ने एक लाइन बोली थी मुझे कि पढ़ाई लिखाई कर ले तो गोलगप्पे की दुकान खोल के दे दूंगा, और अगर

अगर हम लोग इंडियंस को देखें तो स्टार्टअप के नाम पे सबके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है, और वो है कि कोई कैफे खोल लेते हैं या फिर कुछ रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, क्योंकि फूड बिजनेस इज अ नेवर एंडिंग बिजनेस। अगर टेस्ट किसी को पसंद आ गया तो वह इंसान लौट कर आपके पास जरूर आएगा, और इसके साथ साथ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी होती रहेगी, लोग खुद से आपकी दुकान की चर्चा करेंगे। तो ऐसा तो हो गया चलो दुकान का काम, बट क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि एक लड़का सूट और टाई पहनकर सड़क किनारे फ्राइड राइस बेचता है। कहां पर बेचता है बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मगर इस गाने के बाद सुनिए। इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूं द मोस्ट

0: का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

ये गाना बहुत सी लड़कियां गाती हैं, आजकल की जेंजीज गाते हैं जो कोरियन वेब सीरीज देखते हैं। हमने वहीं लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था, के ड्रामा इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, अब वो लोग सी ड्रामा में पहुंच चुके हैं। सी ड्रामा मीन्स चाइनीज ड्रामा, और वो लोग बहुत देखते हैं। बट अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो कोई ड्रामा के बारे में नहीं है, वो है एक ऐसे इंसान के बारे में जो चाइनीज आइटम यानी कि फ्राइड राइस बेचता है। अब फ्राइड राइस तो हर कोई बेचता है, बट वो बेचता है सूट और टाई पहनकर, वो भी सड़क किनारे खड़े होकर। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ये कहीं और की नहीं, ये है हमारे पड़ोसी देश चाइना की। और चाइना में ये 19 साल का लड़का, नाम है अभी फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में चल रही है, ये सूट और टाई पहनकर फ्राइड राइस बनाता है, और ग्राहकों को बुलाने का तरीका भी इसका डिफरेंट है, आंख मारता है ग्राहकों को। अब सोचो इंडिया में ऐसा ये कर दे कितनी मार खाएगा। चलिए, खाना बिल्कुल अलग स्टाइल में परोसता है, फिर उसके बाद इस वजह से ये फेमस हो गया है। अब फेमस तो हो गया है, साथ ही साथ इसकी बिक्री कितनी हो रही है इसके बारे में आप सुनो। 200 से ज्यादा प्लेट ये बेच देता है एक दिन की, और करीब करीब 50,000 चाइनीज युआन ये कमाता है। अब उसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे ना, तो मतलब महीने के ये करीब करीब 7 लाख से 8 लाख रुपए कमा रहा है, जिसमें अगर लागत को हटा दिया जाए तो भी ना करते हुए भी 3.5-4 लाख रुपए ये कमा रहा है महीने के। तो बुरा तो नहीं है 3.5-4 लाख रुपए, अच्छे से अच्छा ग्रेजुएट नहीं कमा पाता इतना, नहीं कमाते हैं नो डाउट, बट मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट स्टिल कोई नहीं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस आकर बात करते हैं मैगी की 2 मिनट नूडल्स, जो कि बन जाती है बड़ी इजीली, पहाड़ों पर बहुत बिकती है, और पहाड़ों पर बेचने के लिए एक लड़का गया और उसने कितनी मैगी बेची और कितने रुपए कमाए, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। ओ पक्के मित्र।

ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ।

0: करना हो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना, एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अभी ये कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेमोर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू शोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

आई नो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि पहाड़ों पर घूमने जाते होंगे और वहां पर फिर बोलते होंगे चलो यार मैगी खाते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है उधर मैगी खाने का सिस्टम, बट जो भी पहाड़ों पर जाते हो पहाड़ों की मैगी जरूर खा के आता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी।

खाना भी खिलाया है और जितनी गंदगी मची थी वो सारी की सारी इसने उठाई भी है वापस और वापस दिल्ली लेकर आया है। तो हैट्स ऑफ इस बंदे को पहले तो। और दूसरी चीज ये कि पहाड़ों पे मैगी बेच के दिन के करीब करीब 10 से 12 हजार तो कमा ही सकता है इंसान, क्या पता कमा सकता है नहीं कमा सकता, ये तो वक्त बताएगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, मगर उनमें से एक गाना ये भी है जो अभी चल रहा है बैकग्राउंड में, इसकी आवाज थोड़ी सी ऊंची कर देते हैं और वापस आकर बात करते हैं। अगर आपकी गाड़ी में एक चीज नहीं होगी ना तो आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, क्या है वो चीज करेंगे उसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
2: तुमने क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर उधर भी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

ना दे गाड़ी दोस्तों नू तेनू नित दा रोना पैजूगा। अगर देखो अगर आप अपनी गाड़ी पर्सनल गाड़ी देते हो अपने किसी दोस्त को, वो अपनी तरह से नहीं चलाता, वो बहुत गंदी तरह से चलाता है, भुगत भोगी हूँ मैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड एक बात बता दूं आपको, अगर आपकी गाड़ी में ये नहीं होगा ना, तो आपको 1 अक्टूबर से दिल्ली NCR में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने वाला। क्या चीज? PUCC। क्या होता है PUCC? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, बस पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये बहुत ईजिली बन जाता है, आप जाइए आपकी गाड़ी का टेस्ट होगा। एक छोटा सा पेट्रोल पंप है, हर जगह पॉल्यूशन वाले बैठे होते हैं ना, हाँ, वो जो छोटा सा पीला कलर का डब्बा सा बना होता है उसके अंदर लोग बैठते हैं, वो आपका बहुत इजीली बना देंगे सर्टिफिकेट। आप सर्टिफिकेट बनवाइए और नो PUC नो फ्यूल नियम लागू होगा 1 अक्टूबर 2026 से, जिससे पूरे दिल्ली NCR में कोई भी इंसान को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा अगर उसके पास PUCC नहीं होगा। देखो पर कुछ चांसेस है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे आपको मिल सकता है उस टाइम पेट्रोल, अगर आपका PUC नहीं है आपके पास। और कानून व्यवस्था भी, मतलब कोई भी आपदा का टाइम होगा तो आपको ऐसे टाइम पर छूट मिल जाएगी और आपको पेट्रोल डीजल मिल जाएगा। बट मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि PUC अपना रेगुलरली चेकअप करवाते रहिए और साथ ही साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए। ऐसी ढेर सारी अपडेट्स की बातें लेकर आते रहता हूँ। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे उठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे ग्लास तो पीती जा।

भी है कन भी है लम्मा पहन भी है मिले

0: नहीं मारा
1: क्या? आपको मालूम है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिसमें लाइट के थ्रू आपके फोन का इंटरनेट चल सकता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और ये कोई ऐसी वैसी टेक्नोलॉजी नहीं, इसे कहते हैं लाईफाई। जैसे वाईफाई होता है ना, वैसी लाईफाई होता है। और इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि वाईफाई जो होता है वो रेडियो सिग्नल का यूज करता है, और जो लाईफाई है ये लाइट के जरिए ही पहुंचता है सब जगह तक। देखो वाईफाई में क्या होता है, वाईफाई में इंटरनेट चलाने के लिए आपको रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है वाईफाई। और जैसे मैंने बताया कि लाइट जहां तक पहुंचेगी वहां तक इंटरनेट पहुंचेगा, तो वाईफाई का सिग्नल पूरे घर, पूरे ऑफिस या पूरी दुकान, किसी भी एरिया में पहुंच सकता है। मगर लाईफाई में ये होता है कि वहीं तक पहुंचेगा जहां तक लाइट जा रही है, जहां रोशनी बंद वहां पर इसका काम करना बंद हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक और बात बता दूं आपको, लाईफाई जो है ना वो बहुत ज्यादा सुरक्षित है। मतलब कोई भी इंसान ट्रेसपास नहीं कर सकता, कोई आपका लाईफाई यूज नहीं कर सकता, कोई इंसान आपके फोन के अंदर घुस नहीं सकता लाईफाई के जरिए, मगर वाईफाई में ये सब हो सकता है। और बता दूं आपको एक और चीज कि लाईफाई जो है ना उसकी स्पीड भी वाईफाई से ज्यादा होती है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि अस्पताल, एयरक्राफ्ट और जितने भी रिसर्च सेंटर होते हैं, इन जगहों पर लाईफाई को फायदेमंद माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फास्ट इंटरनेट चाहिए। बट एक प्रॉब्लम है, लाईफाई महंगा है, और इंडिया में अभी तो बहुत कम जगहों पर यूज हो रहा है। तो लाईफाई के बारे में क्या आपने पहली बार सुना है, या फिर पहले भी सुन चुके हो इसके बारे में, बताइएगा जरूर। नंबर है जी 9654896896। वापस अगर बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स की, क्या है ये डिजिटल डिटॉक्स और कैसे हेल्पफुल है, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे भाई यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो?
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन,

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत।

लोग भी किसी वजह से परेशान हैं तो एक बार डिजिटल डिटॉक्स करके देखो, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। टोटल रहेगा ना, और टोटल हम लोगों ने कहां सुना? सबसे पहले सुना था सोशल मीडिया पर। पर क्या हो, मैं आपको बोलूं कि डिजिटल डिटॉक्स करिए, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज है, आप लोगों को करना है कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्क्रीन, सोशल मीडिया, इन सब से दूरी बनानी है। हो सके तो आधा दिन से स्टार्ट करो और फिर उसके बाद एक दिन तक जाना, अगर हो सकता है तो, वरना नहीं। और बता दूं आपको, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है टेक्नोलॉजी से कुछ समय के लिए दूर होना और असल दुनिया में लोगों से रिश्ते बनाना, जो कि हम लोग भूल चुके हैं। देखो, एक ना स्टडी हुई थी लास्ट ईयर और रिसर्च में पता चला कि मेंटल हेल्थ पर डिजिटल डिटॉक्स का असर ऐसा पड़ता है जैसा एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का पड़ता है। और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन एक बार को वर्क नहीं करेगी, मगर डिजिटल डिटॉक्स वर्क जरूर कर जाएगा। तो प्लीज आप लोग भी ट्राई कीजिए कि सोशल मीडिया और फोन और स्क्रीन से कुछ देर के लिए दूरी बना के रखिए। नहीं, रात को सोते वक्त तो बनाती है, बट स्टिल उससे पहले बना लेंगे तो शायद ज्यादा फायदा हो जाएगा। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ढेर सारे गाने बजेंगे और उन्हीं में से ये गाना जो कि नॉस्टैल्जिया फील कराएगा, मतलब हाँ, पुराने टाइम की याद दिला देगा। सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अभी नहीं, कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेमियोर एंड माइंडफुली। थर्डली, जिनका एक मिनट भी बाबूशोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

लोगों ने कभी लॉटरी जीती है? नहीं नहीं, असली वाली लॉटरी जिसमें आपको पैसे मिले। तो लोग कहते हैं ये तो किस्मत का खेल है, और बिल्कुल किस्मत का खेल है। मगर क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि एक इंसान ने 18 बार लॉटरी जीती है और उसने अब राज बता दिया कि उसने लॉटरी कैसे जीती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड अमेरिका का है ये इंसान जिसका नाम है रॉबर्ट बिविन। अब इस बंदे ने टोटल 18 बार लॉटरी जीत ली, कभी $50,000, कभी $2,00,000, कभी कितने, और इसने सारा का सारा क्रेडिट दे दिया अपनी वाइफ को। कह रहा है कि हम दोनों हमेशा जितने भी पैसे जीतते हैं उसको साथ में एंजॉय करते हैं, और असली जैकपॉट मेरी वाइफ है। भाई ऐसे भी लोग कम मिलते हैं। तो इस इंसान ने अपनी वाइफ को पूरा क्रेडिट दिया और बोला है हम 40 साल से साथ में हैं, हम दोनों को काफ़ी बार होता है कि लड़ाई हो जाती है, बट हम लोग लड़ाई नहीं करते, और टिकट खरीदने के लिए हम लोग एक साथ डिसीजन लेते हैं और फिर उसके बाद लॉटरी की टिकट खरीदते हैं। और इन्होंने हाल ही में करीब करीब $50,000 कमाए कह रहा हूँ जीते हैं लॉटरी में, जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 48 लाख रुपीज़ इन्होंने अभी जीते हैं। और ऐसे प्राइज मनी इनफ है, इनफ क्या मोर देन इनफ है, फ्री में आ रहा तो इनफ ही है ना, मतलब फ्री में तो नहीं, खैर लॉटरी टिकट बड़ी सस्ती होती है, बट स्टिल प्राइज मनी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। इंडिया में लॉटरी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, साउथ इंडिया में जाके देखिए बहुत सारी लॉटरी टिकट मिलेगी आपको। पता नहीं अब दिल्ली शहर में क्यों बंद होगी, खैर बंद होगी तो ठीक है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए आप सभी के लिए एक मिक्स मैशअप गाना 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड फरीदाबाद में एक बहुत ही बड़ा स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगने वाला है, चेकअप कैंप लगने वाला है, और वो है 20 मई को, बुधवार को। तो परसों आप लोग जा सकते हो पूरी बॉडी का चेकअप कराने के लिए। यहाँ पर आपको ऑर्थो वाले डॉक्टर भी मिल जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट भी मिल जाएंगे, साथ साथ मनोविज्ञान वाले डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट भी मिल जाएंगे, आईज, डेंटल, हड्डी, सब चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक ये क्या हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेक्टर 16 पंजाबी भवन में। फिर से रिपीट कर देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप कैंप आप सभी के लिए लगाया जा रहा है स्पेशल अचीवर्स के द्वारा। तो प्लीज आप लोग भी जरूर जाइएगा, और आई होप सभी लोग स्वस्थ हैं, बट अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग जाके चेकअप करवा सकते हैं। खैर वैसे मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का, तो मैं लेता हूँ आप लोगों से इजाजत। मिलूंगा मैं आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 8। आज तो मंडे है, अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है और गर्मियां तो पूरी की पूरी बाकी है। तो चलिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए। हाँ, गीत आने वाली है, वो ये बताना था, गीत आने वाली है विद इश्कबाजिया, तो सुनना ना भूलिए इश्कबाजिया विद आरजे गीत, ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ हटके, बाय बाय, टेक केयर, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन
1: रोडवेज वाले?
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट में ढूंढ।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कितनी अजीब चीज है ना ये इश्क। कभी यही इश्क दुनिया की हमें सबसे खूबसूरत जगह पर ले जाता है और कभी यही इश्क हमें हमारी तन्हाइयों से मिलवा देता है। इश्क में सब कुछ बहुत गहरा हो जाता है, खुशी भी है, याद भी है और इंतजार भी है। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं शो इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात हो चुकी है और घड़ी में 8 बज चुके हैं। दिन की भागदौड़ अब धीरे धीरे थम रही है, सड़कें थोड़ी शांत हो रही हैं और दिल अब अपने असली ख्यालों की तरफ लौटने लगा है, क्योंकि रात का समय ऐसा ही होता है। दिन में हम जितना भी खुद को बिजी रख लें, रात को कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ बातें खामोशी से हमारे पास आकर खड़े हो जाते हैं और शायद यही वजह है रात का ये समय इश्क को समझने के लिए सबसे सही होता है। तो चलिए इसी रात, इसी खामोशी और इन्हीं एहसासों के साथ शुरू करते हैं इश्क बाजियां का पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां हम बात करते हैं उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उसे शब्दों में ऐसे ढाला कि उनकी शायरी आज भी दिल तक सीधा पहुंच जाती है। और आज इश्क शायराना में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शायरा की जिनकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी है और जुदाई की चुप्पी भी। मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो इश्क को किसी कहानी की तरह नहीं लिखती, वो इश्क को जिंदगी की तरह लिखती है। जहाँ सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, जहाँ लोग हमेशा साथ नहीं रहते, जहाँ कभी कभी मोहब्बत बस एक याद बनकर रह जाती है। उनकी गजल है जिसकी शुरुआत ही इतनी सच्ची है कि सुनने को लगता है जैसे किसी ने दिल की बात कह दी हो। वो लिखती है, अब भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। सोचिए जब दिल किसी के पास रह जाए तो इंसान कहीं और जाकर भी क्या करेगा। रास्ते चाहे कितने भी खुले क्यों ना हो, सफर तभी खूबसूरत लगता है जब कोई साथ चलने वाला हो। और अगर वही इंसान हमारे साथ ना हो तो फिर सच में शाम के वक्त सफर करने का मतलब क्या रह जाता है। और आगे लिखती है, तेरी मसरूफियतें जानते थे, अपने आने की खबर क्या करते। कितना गहरा एहसास है इसमें। कभी कभी हम किसी की जिंदगी में इतने धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं कि हमें लगता है शायद हमारी मौजूदगी भी मायने रखती है, लेकिन फिर वही एहसास होता है कि सामने वाला इंसान हमारी नहीं अपनी ही दुनिया में मसरूफ है। और तब दिल चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लेता है। ना कोई शिकायत है, ना कोई सवाल है, बस एक खामोशी। और शायद इसी खामोशी को परवीन शाकिर ने अपने एक और शेर में बहुत ही खूबसूरती से कहा है। वो मुसाफिर ही खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। मतलब अगर कोई इंसान रुकने के लिए बना ही नहीं है, अगर वो एक मुसाफिर था तो फिर हम अपनी मोहब्बत की छांव फैलाकर भी उसे रोक कैसे लेते। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग बस मुसाफिर होते हैं, वो आते हैं हमारी दुनिया में, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और हम काफी देर तक उन्हीं रास्तों को देखते रहते हैं जहां से वो गुजरा था। परवीन शाकिर की शायरी की खूबसूरती यही है, वो मोहब्बत को सिर्फ पाने की बात नहीं करती, वो मोहब्बत के बाद बच जाने वाली खामोशी की भी बात करती हैं। और शायद इसीलिए उनकी शायरी सुनते हुए हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी कहानी नजर आ ही जाती है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। एक गाना सुनते हैं और वापस लौटेंगे इसी इश्क शायराना के सफर में परवीन शाकिर की कुछ और बातों के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

और ये था बहुत ही खूबसूरत गाना। रात की खामोशी में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस होते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत। और जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है वैसे दिल भी थोड़ा थोड़ा और सच्चा होता जा रहा है। दिन में हम बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, खुद को बिजी रख लेते हैं, लेकिन रात रात को अक्सर वो ख्याल वापस आ जाते हैं जिनसे हम दिन भर बचते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि इश्क को समझने के लिए ये समय बहुत खूबसूरत है। इसलिए इश्क बाजियां के पहले सेगमेंट इश्क शायराना में मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की अगली नज्म पर बढ़ते हैं जहाँ वो मोहब्बत को किसी बड़े दावे के साथ नहीं लिखती हैं। वो मोहब्बत को छोटी छोटी यादों, छोटी छोटी मुलाकातों और दिल की हल्की सी कसक में ढूंढती हैं। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसका पहला ही शेर है, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। कितनी सच्ची बात है, कभी कभी जिंदगी में खुशी और उदासी एक साथ होती है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कमी रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग हमारी खुशी का हिस्सा बन जाते हैं और जब वो साथ नहीं होते तो खुशी भी थोड़ी अधूरी सी लगती है। और वो आगे लिखती है, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने दिल की थकान लिख दी हो। जब हम किसी को बहुत चाह लेते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान दुआ करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद किस्मत में अब वो नाम नहीं है। लेकिन परवीन शाकिर की शायरी की यही खूबसूरती है, वो मोहब्बत को शिकायत नहीं बनने देती, वो उसे एक याद बना देती है। ऐसी याद जिसमें कभी चांद की रोशनी होती है, कभी ठंडी हवा और कभी दिल की हल्की सी कसक। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

खूबसूरत गाने के साथ फिर से स्वागत है। कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस कानों तक नहीं रुकते, सीधा दिल तक उतर जाते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी में सिर्फ इश्क मिल जाने की खुशी नहीं है, उसमें बिछड़ जाने की सच्चाई भी है और याद बनकर रह जाने का दर्द भी है। तो उनका एक और शेर मैं आपको सुनाती हूँ। वो लिखती है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है इसमें। कुछ लोग सच में खुशबू की तरह होते हैं, वो हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर हवाओं में बिखर जाते हैं। लेकिन जो इंसान उनसे मोहब्बत कर बैठता है, उसके लिए सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ गया, सवाल ये होता है कि अब वो खुद किधर जाए। वो आगे लिखती है, हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी रगे जा में उतर जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि दिल पर लगा दर्द बस थोड़ा सा वक्त मांगता है, थोड़े दिन गुजरेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल पर नहीं लगते बल्कि हमारी रूह में उतर जाते हैं, और फिर इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उनकी याद कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती रहती है। और फिर वो आगे लिखती है, वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। यानी दिल कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर वो इंसान कभी लौट आया तो जिंदगी फिर से खूबसूरत हो जाएगी। कभी कभी इश्क यादों से ज्यादा उम्मीदों पर जिंदा रहता है, और शायद इसीलिए इंसान पूरी तरह अपने पसंदीदा इंसान को भूल नहीं पाता है। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: सब को सब नहीं मिल।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है इश्क शायराना। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो मोहब्बत को सिर्फ शुरुआत से नहीं देखती, वो उसके बाद की खामोशी भी लिखती हैं। कभी जिंदगी में एक ऐसा मौसम आता है जब सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे अचानक जिंदगी में बहुत गुलाब खिल गए हों, लेकिन वही मौसम जब गुजर जाता है तो उसकी याद भी धीरे धीरे दर्द बन जाती है। तो एक शेर है, सुनाती हूँ। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। यानी जो पल कभी बहुत खूबसूरत थे वही याद बनकर कभी कभी दिल को तकलीफ देते हैं, क्योंकि सच ये है कि इंसान यादों से भाग नहीं सकता, वो चाहकर भी कुछ चेहरों को, कुछ बातों को, कुछ लम्हों को भुला नहीं पाता। और फिर वो लिखती है, राग के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने टूटे हुए सपनों की तस्वीर खींचती हो। हम अपने सपनों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि जब वो टूटते हैं तो सिर्फ सपना नहीं टूटता, हमारा एक हिस्सा भी टूट जाता है। लेकिन जिंदगी की अजीब बात यही है कि इंसान फिर भी जीता रहता है, वो रात के बीच भी एक नई सुबह ढूंढने की कोशिश करता है। और शायद इसीलिए मोहब्बत चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लोग उससे दूर नहीं भागते, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं देती, वो इंसान को थोड़ा और गहरा बना देती है, मैच्योर बना देती है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर वन, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।

यानी कि एक इंसान अगर साथ हो जाए तो ये पूरा जहां साथ हो जाए। इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। परवीन शाकिर की बात हो रही है, उनकी शायरी बहुत खूबसूरत है, ये तो मानना पड़ेगा कि वो इश्क को सिर्फ कहानी नहीं बनाती बल्कि उसे याद बना देती हैं। ऐसी याद जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है, लेकिन सच ये है कुछ रिश्ते जिंदगी से नहीं जाते, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप रख दिए जाते हैं। तो उनका अगला शेर है, याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कितनी गहरी बात है इसमें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज याद नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं, जैसे अलमारी में रखी कोई पुरानी किताब जिसे हम बार बार नहीं खोलते, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें हमेशा पता होती है। और शायद यही वजह है कि मोहब्बत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल देती है। पहले वो किसी इंसान में होती है और फिर धीरे धीरे वो यादों में रहने लगती है। तो अगला शेर है, हिजर की शब मेरी तन्हाई पर दस्तक देगी, तेरी खुशबुएं मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। यानी जुदाई की रात जब आएगी तो तेरी याद भी आएगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना ख्वाब अचानक दिल में लौट आया हो। और शायद यही इश्क की सबसे गहरी बात है। इश्क हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी इश्क बस एक खुशबू बनकर रह जाता है जो वक्त के साथ हल्की तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती। और यही खूबसूरत एहसास के साथ आज के इश्क शायरानों को हम यही विराम देते हैं। मैं हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाज।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क भाजिया में, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई, दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे उनको कैसे प्यार हुआ, इसके बारे में बात होगी। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थीं जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है, और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख। ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है, लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहाँ जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्क बाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्क बाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन्हीं रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, केयर कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़े, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जन

ऐ काश कि हम होश में आने ना पाएं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जानें। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं।

अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूँ। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हंसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: लतीफा तुम्हें सुनाती है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसमें जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा रही है।

0: खुशियाँ सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम बेमिसाल तुम लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते।

0: है शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सत्ते से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार नहीं रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपके और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल।

0: सकती हूँ। माँ की नजरे दरवाजे पर टिकी रहती है, पापा के सवालों में सत्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार नहीं रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
1: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किसे पे आएगा।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ही खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: तुम पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: हाल कैसा है जनाब का?
5: क्या ख्याल है आपका?
4: तुम तो मचल गए हो।

0: हमेशा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का भारूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा

0: लो, हाथ जरा थाम लो, बार बार पूछो ना, दिल से भी काम लो,
1: काम का बताओ,
0: काम सीधा सादा है,
1: बोलो बोलो,
0: आज लेना एक वादा है,
1: क्या,
0: आजा आजा, शादी का इरादा है, शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना बाबा ना,
0: मगर क्यों,
1: शादी तो बर्बादी है,
0: क्या कहती हो,
1: हो जाती आजादी है,
0: नहीं नहीं,
1: बाबा,
0: सुनो तो,
1: बाबा,
0: सुनो तो, सुनो तो,
2: आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: आप यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया इसलिए।
0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: देखिए तो क्या हसीन रात है।
0: काम को बताइए बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: आप यहाँ आए किस लिए? मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।
1: भूल

0: तुम्हारे हैं।
1: वेरी गुड।
0: तेरे ही सहारे हैं।
1: योर

0: मुस्कुराई मुस्कुराई
1: कभी ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता चल लेते हैं, काम तो नहीं करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

मत बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

यहाँ है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुरैया मारे गिल को मुरैया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले बकर सिरा कूड़े
1: मुरैया मारे गिल को मुरैया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले बकर सिरा कूड़े।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की, मर खुली तो प्यारे खाक की,
0: दिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की, मर खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: ए जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मैंने कहा कि मैंने शराब छोड़ दी है।
1: ओह नो,
2: मैंने तो सुना था दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
0: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

पेट में इनके लंबी सी दाढ़ी, चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े

दुनिया अब अपना घर है, हार न मानेंगे ये खिलाड़ी। चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: Wheels of Life, Wheels of Hope, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार

0: किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चल रही है?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई सस्ता समझ लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपके और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हेडफोन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसमें जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा रही है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हंसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे। आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट पर खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रिया नहीं टच है। जितने भी रूमर सुने तुमने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

जैसे हिलती है वैसे मत हिलाकर, लगे मुझे रहेगी रब से मिलाकर, बारी तेरी हार देना चिंचिला फर, माने तुझे पड़ा कि ये क्या खिला

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई नहीं सस्ता चल लेते हैं, काम तो नहीं करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई

0: अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
1: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
3: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: पथ ही है बस ऐसा पथ जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री राम सुखदास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन में, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। मन करेगा तो करेगा, पर हम उसके संग नहीं चल देंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रसगान का आरंभ यहीं से करते हैं, जोई जोई प्यारो करें

0: प्यारे
1: जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे। ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

अमृत मोह सिंधु की दारा, काढ़ दया कर कर मुही पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हो अति दीन महा दुख पावत, लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहां की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहां तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहिए, यहां पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर हुए। और समय रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुंह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने, जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब रसना थकी न बोलियो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, भजन करने से ज्यादा सही निर्णय कोई नहीं है। लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम का स्मरण करने से गति हो जाती है, अरे गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है। अरे ये जीवन मिला इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते। ये जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम, शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूढ़ मती, जब समय चला जाएगा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा, क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है।